एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के बैसाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

0: ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मातृवंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृवंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए अरुण दाते के स्वर में ये भक्ति गीत, रचना शिव शंकर वशिष्ठ की है।

श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना में आखिर में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में पंडित नरेंद्र शर्मा की ये रचना। संगीत निर्देशन हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। आज का विषय है मानवीय मूल्य और चिंतक है प्रोफेसर गुरु शरण। लीजिए सुनिए।
1: चर्चा और चिंतन के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई, उसमें भाग लेने पर मुझे तो ऐसा लगा कि व्यंजनों में नमक, वैसे ही जीवन में मानवीय मूल्य हैं। मूल्य का एक अर्थ कीमत से होता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइस कहते हैं, और दूसरा अर्थ उससे बढ़कर है, जिसे हम वैल्यू कहते हैं। जीवन की कोई बाजार में कीमत नहीं लगाई जा सकती, वह तो बहुत ही मूल्यवान है, और उसका मूल्यवान होना उसकी मानवीयता पर आधारित है। संसार का कोई भी नवजात शिशु माँ के गर्भ से अपराधी, दुष्ट या शैतान होकर नहीं जन्मता है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है, हमारे सामाजिक मानवीय मूल्य उसे अच्छा और अच्छा बनाते जाते हैं। इसी के लिए धर्म में यम नियम के पालन की बात कही गई है। धर्म के 10 लक्षणों में भी प्रत्येक लक्षण मानवीय मूल्य से जुड़ा हुआ है। हमारे संस्कार, विरासत और वातावरण हमारे मानवीय मूल्यों की बुनियाद के रूप में सहायक होते हैं। शांति, सेवा, शील, समता, ये सब इंसान को इंसान बनाने और इंसान बने रहने में मददगार होते हैं। हमारे ऋषियों ने भी कहा, असत्य से सत्य की ओर, तमस से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ो। मानवीय मूल्य किसी वस्तु, ज्ञान, प्रत्यय या कोरे आदर्श से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से उद्भूत होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सच्ची शिक्षा आचरण से प्राप्त होती है। आचरण की पवित्रता ही जीवन का सबसे बड़ा वैभव है, सौंदर्य है। मानवीय मूल्यों में सत्य, अहिंसा, शील, संतोष, सदाचार, धैर्य, पुरुषार्थ, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, सत्संगति, परोपकार, आतिथ्य, मित्रता, सेवा, समता और राष्ट्रीयता सभी को कहा जा सकता है। इन मानवीय मूल्यों की व्याख्या में हमारे ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने तरह तरह से कहा। जहां ईश्वर को सत्य कहा गया, वहीं आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने सत्य ही ईश्वर कहकर उसे और सारगर्भित बनाया। महाभारत के अनुशासन पर्व में अहिंसा को परम धर्म, परम संयम, परम दान, परम तपस्या और परम सुख की संज्ञा दी गई। कहा गया है, हिंसा न करने वाला मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के माता पिता के समान है। इसी को और व्यापक करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, दूसरों का दिल दुखाना भी हिंसा है। अतः अहिंसा एक जीवन शैली के रूप में हम जिएं और दूसरों को जीने दें। एक मानवीय मूल्य के रूप में जन जन के व्यवहार में अहिंसा आए, ऐसी उनकी इच्छा और आकांक्षा थी। उन्होंने नोआखाली के दंगों में स्वयं का उपवास घोषित कर आपस में खून के प्यासे लोगों के हाथों से छुरे और तलवारें उनके चरणों पर गिरवा ली थी। अहिंसा के सामने हिंसा का ये समर्पण था, जिसके बारे में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत विभाजन के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों में जो काम ब्रिटिश फौजें नहीं कर पाईं, वह अकेले महात्मा गांधी की उपस्थित भर ने कर दिया। महात्मा गांधी के इस मानव रूप को हम जाने, समझें और पहचाने तो मानवीय मूल्यों की अवधारणा सुमेव स्पष्ट हो जाती है। मानवीय मूल्य हर व्यक्ति को व्यवहारिक गुणों से संपन्न करता है। यदि हर व्यक्ति में शील, संतोष, सदाचार और धैर्य आ जाए, वह अपने पुरुषार्थ को समझ ले, तो फिर उसका जीवन धन्य होने में क्या देर लगती है। इसीलिए गांधी जी ने अपने पूरे दर्शन के बारे में केवल एक ही वाक्य कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।
0: मानवीय मूल्य, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन। चिंतक थे प्रोफेसर गुरु शरण। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पाठ के संगीत में प्रसारण का। आज कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

भगवान शिव पार्वती को काक भुशुंड की सिद्धत्व प्राप्ति की कथा सुना रहे हैं। सुमेरु पर्वत के और उत्तर में एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी नील पर्वत है। इस पावन स्थल पर काक भुशुंडी हरि का भजन, जप और यज्ञ तथा मानस पूजा करते हैं और वहां पहुंचे श्रद्धालु पशु पक्षियों को हरि कथा सुनाते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ का संगीतमय प्रसारण। आज कलाकार थे सुरेश वाडकर। और श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम कृषि समाईकी का। आज इसमें जानिए ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों का प्रबंधन। और इस विषय पर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं डॉक्टर नीरज कुशवाहा।
1: भाइयों नमस्कार। जैसा कि विदित है कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस समय पे हमारे जो फलदार वृक्ष हैं जिनके बगीचे लगे हुए हैं उनका प्रबंधन बहुत ही जरूरी हो जाता है। पानी की उपलब्धता को देखते हुए उनकी कटाई छटाई, रखरखाव, थाला बनाना, खाद देना, तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि अभी जो फलदार वृक्ष जिन पे फल लग रहे हैं जैसे कि आम है उसको हफ्ते में एक बार पानी जरूर देना है। थाला कम से कम 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए और थाले की जो आसपास की मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी गुड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब भुरभुरी हो। और यहाँ NPK अगर है तो हम इसको 50 ग्राम 100 ग्राम तक, अगर 5 साल से ऊपर का है तो 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। लेकिन पानी या नमी वहाँ जरूर होनी चाहिए ताकि उसकी जड़ें जले नहीं। अगर आपने पानी नहीं दिया, सिर्फ खाद डाल दी या उर्वरक डाल दिया तो उसमें जलन की समस्या हो सकती है। तो हमको नमी वहाँ बनाए रखनी है ताकि हमारे जो फलों का साइज है, आकार है, वो वृद्धि कर सके। इसके अलावा सभी जो भी अन्य फलदार वृक्ष हैं उनमें भी नमी बनाए रखने के लिए हमको समय समय पर पानी देना है। और इसकी जो कटाई की बात है यानी जिसको प्रूनिंग कहते हैं, तो प्रूनिंग हमको अगर जिनमें फल आ रहे हैं, फल लगने के बाद हमको उनकी लाइट प्रूनिंग करनी है। ज़्यादा घनी प्रूनिंग नहीं करनी है, लाइट प्रूनिंग। कई पेड़ ऐसे हैं जो नई शाखाओं पर ही वृक्ष अगले वर्ष आएंगे, जैसे कि आम है, जैसे कि अमरूद है, जैसे कि आपका अनार है, जामुन है, बेर है, बेल है, तो इन सभी पर और सहजना, ये सभी पर हमको नए फल लेने के लिए प्रूनिंग करनी होती है। तो जब इन पर फल खत्म हो जाए उसके बाद लाइट प्रूनिंग करें। जितनी भी शाखाएं उस पर लगी हैं उससे 50% से कम ही प्रूनिंग करनी होती है। लेकिन जैसे बेर है या सहजना है तो इसको प्रूनिंग करने के लिए हमको 4 मीटर, अगर पेड़ हमारा है तो 4 मीटर से इसको फ्लैश आउट कर देते हैं, मतलब 4 मीटर के बाद हम इसको पूरा काट देते हैं तने से, जिससे कि नई शाखाएं या किले जिसको बोलते हैं वो निकलते हैं और उस पर हमें नए फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जिसके पास अंगूर है, अंगूर में भी 50% तक हमको अंगूर की कटाई छटाई करनी होती है और वो अगले वर्ष वहाँ पर उसमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इससे लाभ भी बहुत सारे हैं, जो सड़े गले फल लगे हैं वो भी हट जाते हैं, कोई बीमारी किसी शाखा पे आ रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सब भी दूर हो जाता है। और इन पेड़ों का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि ये नई शाखाओं पे भी आते हैं। अगर आप नहीं काटेंगे तो शाखाएं तो वृद्धि करेंगी लेकिन उतनी नहीं करेंगी, अगर कम रहेंगी तो फिर कम फल उस पे हम अर्जन कर पाएंगे। इसलिए थालों का और इसका प्रूनिंग जरूरी है। इसके अलावा जो किसान भाई नए वृक्षारोपण अपना खरीफ सीजन में करना चाहते हैं तो उसके लिए वो अभी से पेड़ों के हिसाब से कम 1 फिट बाई 1 फिट बाई 1, मतलब एक गहरा, एक चौड़ा, एक ऊंचा गड्ढा हमको करना है। निश्चित दूरी पर रखें, ये थोड़ा सा बदलता है कि कौन सा वृक्ष है, कहाँ पर लगा रहे हैं। तो जो भी आपने सुनिश्चित किया है कि इस बार हम इस पेड़ का वृक्षारोपण करेंगे, तो उस स्थान का अगर आपने चयन कर लिया है तो वहाँ पर आप अपना गड्ढा कर लें और उसकी जो भी मिट्टी निकलेगी उसको अपन को फेंकना नहीं है, उस गड्ढे के बाजू में ही रखना है। और वृक्षारोपण का इंतजार, जब हम बारिश का समय आएगा तो हम वृक्षारोपण उसमें करेंगे। लेकिन वृक्षारोपण करने के पहले एक बार जब पूरा थाला पानी से, बारिश के पानी से भर जाए और वो नीचे की तरफ परकुलेट हो जाए, तब हमको उसमें मिक्सचर बना के वही मिट्टी लेकर उसमें गोबर की पची हुई खाद लेकर कुछ फंजीसाइड और कुछ इंसेक्टिसाइड मिलाते हुए तब हमको वृक्षारोपण उसमें करना है। क्योंकि ऐसा ना करने पर वो जब कभी कभी पहले कर देते हैं, बारिश आने वाली है तो मिक्सचर बनाया, उस गड्ढे में रखा और हमने उसको वृक्षारोपित कर दिया, लेकिन जब उसमें जो हीट है, गर्मी है निकलती है तो उस वजह से उसकी जड़ों को सुखा देती है, उसमें भी बल्कि रूट हेयर्स जो होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, तो उनको सुखा देती है। और हम जब जड़ निकालते हैं तो हमें लगता है कि जड़ें तो साबुत हैं लेकिन हमारा पेड़ सूख गया है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमको वृक्षारोपण करना है।
0: ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों का प्रबंधन, इस विषय पर आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे डॉक्टर नीरज कुशवाहा, कार्यक्रम कृषि सामयिकी के तहत। श्रोताओं, कार्यक्रम कृषि सामयिकी अब यहीं संपन्न हुआ। अब जानकारी लीजिए हमारी आज की सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की। प्रस्तुत है कार्यक्रम

श्रोताओं अब से कुछ ही पलों बाद यानी सुबह 7:05 पर सुनिएगा सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित लघु वार्ता। सुबह 7:20 पर सुनिएगा हिंदी वार्ता जिसका विषय रहेगा प्रिंट मीडिया में हिंदी। वार्ताकार होंगे श्री देवेंद्र कुमार शर्मा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7:30 पर, सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिवपुरी की विशेष प्रस्तुति सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आप सुनेंगे रोजाना की तरह सुबह 7:45 पर। श्रोताओं आपके फरमाइशी खतों के साथ हाजिर होंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर सुबह 8:30 पर और सुबह 9:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे सुबह 9:00। आज इस कार्यक्रम में कलाकार

जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित अन्य कार्यक्रमों में सुनिएगा दिन में 11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत और दिन में 1:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। प्रस्तुति भोपाल केंद्र की रहेगी। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो से सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी ऋचा शर्मा। श्रोताओं, हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 7:21 पर ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम चौपाल। आज इस क्रम में चर्चा के विषय रहेंगे पर्यावरण संरक्षण आज की अवधारणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, फसल विविधीकरण क्यों और कैसे। साथ ही एक भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे जिसका विषय रहेगा फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण। वार्ताकार होंगे श्री जितेंद्र कुमार जाटव और आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। सुनिएगा कुछ लोकगीत और लीजिएगा मौसम की जानकारी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। श्रोताओं, इस समय प्रातः की 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। कृपया

0: एवं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्री मोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटिमितानां विकासकार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित लघु वार्ता।

श्रोताओं, भारत देश आरंभ से ही वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण जगत एक परिवार के सिद्धांत को मानता आया है, विश्व को प्रेम और शांति का संदेश देता रहा है। जिस प्रकार एक बगीचे की शोभा उसमें खिल रहे भिन्न भिन्न रंगों के फूलों से होती है, उसी प्रकार हमारा देश अनेक विभिन्नताओं को अपने में समेटे हुए सुंदर उपवन की तरह सुशोभित है। ये विषमताएं भारतीयों को तोड़ती नहीं बल्कि एक माला की तरह जोड़ती हैं, उन्हें सशक्त बनाती हैं। श्रोताओं, हमारे देश में अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण के लोग रहते हैं और सभी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार धर्म को मानते हैं। सभी धर्मों का सार, उसका मूल है मानवता की सेवा करना और सभी को अपनी अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करने का संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है और इसीलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अपने धर्म और उन्हें अनेक धर्म और जाति के होते भी यहाँ अनेकता में एकता के और भाई का भाई से आपस में प्रेम हमें दिखाई पड़ता है और यही कारण है कि आज हमारा देश विकासशील देशों की गिनती में गिना जाता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है श्रोताओं कि कभी कभी हमारे तर्क वितर्क, हमारे नकारात्मक विचार, हमारा ज्ञान ही हमारी एकता में बाधा बन सकता है, जो कि एक गंभीर समस्या बन सकता है। श्रोताओं, प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में धर्म को मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है और धर्म को ही वो साधन बताया गया है जो हमारे अंदर कर्तव्य भावना को प्रेरित करता है। धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों का आधार ईश्वर को पाना, मोक्ष को पाना माना गया है। धर्म तो हमें आपस में जोड़ता है, आचार विचारों को शुद्ध करता है और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस देश में धर्म को उच्च स्थान दिया जाता है उस देश का सतत विकास होता है और इसके विपरीत जहाँ पारस्परिक घृणा, मनमुटाव का वातावरण होता है उस देश के विकास की गति भी रुक जाती है या धीमी हो जाती है। श्रोताओं, हमें स्वयं को इतना सुदृढ़, इतना विवेकशील बनाना होगा कि उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, तार्किक अतार्किक, इन सभी के बीच अंतर को हम स्पष्ट रूप से पहचान सके, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं मानवीयता की गरिमा बरकरार रहे। लोगों को जागरूक होना होगा, शिक्षित होना होगा ताकि वे सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिक अलगाव में फर्क कर सकें। आज आवश्यकता है कि हम सभी अपने आप को भारत की संस्कृति में आत्मसात करें और इस तुच्छ सोच से बाहर आए। श्रोताओं, सभी के सामंजस्य से ही यह संभव हो सकेगा और हमारा देश ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू सकेगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित लघु वार्ता। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर, राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे पहुंचेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर जा रहे हैं। वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। ग्रीन एनर्जी, समुद्री अर्थव्यवस्था, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कल श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की।
1: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
0: स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों को कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के साथ श्री मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। एआई से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई, जो सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की मदद करेगी। प्रदेश में आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया समझ सकेंगे। रायसेन में बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कल खत्म हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होते हैं। वहीं विदिशा में श्री चौहान ने कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की।
2: यहाँ मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल विशेषकर मेडिकल कॉलेज में अगर जगह मिल जाए तो वहाँ स्टेजेज में वो शुरू करेंगे कैंसर का इलाज। पहले स्टेज में वो उस जगह पर कीमोथेरेपी से शुरू करेंगे। मुझे विशेषकर चिंता थी मेरी बहनों की, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी संख्या में होता है और बहनें बताती नहीं। तो ये आया कि एक व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग हो जो 5, 6 और 7 जून को। तो टाटा मेमोरियल वालों ने सुझाव दिया कि 3 दिन रहने।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: धार की भोजशाला में कल सुबह मां वागदेवी की प्रतिकृति गर्भगृह में स्थापित की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के बाद सुबह 6:27 पर मंत्रोच्चार और हवन के बीच यह पूजन संपन्न हुआ। 15 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला को मां वागदेवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2000

0: तीन का वह आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार नमाज की अनुमति दी गई थी। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल के किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती की तस्वीर बदल दी है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना का लाभ उठाते हुए उन्होंने खेती को घाटे के काम से निकालकर मुनाफे का व्यवसाय बना दिया है। उनकी ये कामयाबी जिले के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
1: बैतूल जिले के एक युवा किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी को अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इस युवा किसान ने बढ़ती लागत और घटते मुनाफे को देखते हुए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और खेती को व्यवसाय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिससे मध्य प्रदेश शासन की किसान हितैषी योजनाएं भी मददगार साबित हुई।
2: मैंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना से 9,60,000 रुपए का अनुदान लेकर कस्टमाइजिंग सेंटर स्थापित किया है। इसके साथ ही मैंने सुपर सीडर थ्रेसर रोटावेटर को व्यवसाय का रूप देते हुए पहले वर्ष में 8,00,000 रुपए का और दूसरे वर्ष में 12,00,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है।
1: आज कमलेश देशमुख क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका मानना है कि नई तकनीक योजनाओं का समुचित उपयोग और नवाचार की सोच से खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ व्यवसाय बनाया जा सकता है। बैतूल से मयंक भार्गव।
0: देवास के टोककला के पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में तय मात्रा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी थी और सुरक्षा के इंतजाम भी कमजोर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 16 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत सम्मान के रूप में दिया जाएगा। 1954 से शुरू ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं। भारतीय नौसेना ने भोपाल की अपर झील में अपना नौकायन केंद्र शुरू किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल इसका उद्घाटन किया। यह केंद्र नौसेना के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स को भी रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग का प्रशिक्षण देगा। 5 साल पहले शुरू हुई नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज योजना आज रंग लाने लगी है। देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़ा है और चीन से आयात में काफी कमी आई है। विदेशी खिलौनों पर आयात शुल्क 20 से बढ़ाकर 70% किए जाने का असर साफ दिख रहा है। बाजार में अब घटिया और असुरक्षित खिलौनों पर भी लगाम लगी है। अलीराजपुर के कठीवाड़ा में उगने वाला नूरजहां आम अपने विशालाकार की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। ये एक आम का वजन 2 से 5 किलो तक होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ मैंगो भी कहते हैं। बाजार में इसकी कीमत 1500 से 3000 रुपए प्रति आम तक पहुंच जाती है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल राजगढ़ में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा समेत 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। अब खबर क्रिकेट की। आईपीएल में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में आरसीबी धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर आईपीएल प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। खजुराहो में कल सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने 50 बिस्तरों वाले आयुष वेलनेस सेंटर और एलीट शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में संभावना गतिविधि के तहत कोरकू, बुंदेली और बघेली लोक नृत्य गायन की रंगारंग प्रस्तुति हुई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटिक ने सागर से टीकमगढ़ तक का सफर सरकारी काफिले की जगह आम यात्री बस से किया। बैतूल में पर्यटन बोर्ड की जनजाति पर्यटन परियोजना के तहत बज्जरवाड़ा गांव में 3 नए ग्रामीण होम स्टे का उद्घाटन किया गया। और विदिशा में 59,000 से अधिक किसानों से 5,09,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी वार्ता। विषय है प्रिंट मीडिया में हिंदी। वार्ताकार हैं श्री देवेंद्र कुमार शर्मा।
2: प्रिंट मीडिया पत्रकारिता का सबसे पुराना एवं विश्वसनीय आधार है। भारत जैसा देश जहाँ क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव अधिक है, जहाँ बोलियाँ कुछ ही दूरी पर बदल जाती हैं, लेकिन हिंदी मीडिया ने समूचे राष्ट्र को जोड़ने हेतु पुल अर्थात सेतु के रूप में कार्य किया है। भाषा किसी भी समाज के लिए आईना होती है। भारत जैसे देश में हिंदी कोई भाषा ही नहीं, जन संवाद का सबसे सशक्त माध्यम भी है। आज के डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता और क्षेत्रीय पकड़ के कारण हिंदी को केवल साहित्य की भाषा न रखकर उसे राजनीति, व्यापार, विज्ञान और मनोरंजन की वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित कर दिया है। वर्तमान समय में सूचनाएं उंगलियों पर उपलब्ध हैं, लेकिन सुबह की चाय के साथ हिंदी समाचार पत्र का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। प्रिंट मीडिया में हिंदी की शुरुआत एवं प्रमुख अखबार भारत में हिंदी प्रिंट मीडिया का सफर 30 मई 1826 के दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल के उद्दंत मारतंड के साथ शुरू हुआ। हालांकि यह अधिक समय तक नहीं चल सका, लेकिन इसने हिंदी में समाचारों की नींव रख दी। मध्य प्रदेश में हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र मालवा अखबार था, जो 6 मार्च 1848 के दिन इंदौर से प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक प्रेम नारायण जी थे। स्वतंत्रता पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हिंदी पत्रकारिता को समाज सुधार और आज़ादी का हथियार बनाया। प्रताप, करमवीर और आज जैसे अखबारों ने जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाई। आज़ादी के बाद साक्षरता दर में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच के कारण हिंदी समाचार पत्रों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। समाचार पत्रों ने स्थानीय संस्करणों के माध्यम से पाठकों के दिलों में जगह बनाई। वर्तमान में हिंदी समाचार पत्र पाठक संख्या के मामले में हिंदी अंग्रेजी से काफ़ी आगे है। 21वीं शताब्दी में तकनीकी क्रांति के फलस्वरूप ऑफसेट प्रिंटिंग और कंप्यूटर के आगमन ने अखबारों की छपाई की गुणवत्ता और गति में काफ़ी सुधार आया है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी प्रिंट मीडिया की भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अखबार केवल सूचना का माध्यम नहीं अपितु क्रांति का शंखनाद थी। उस दौरान हिंदी प्रिंट मीडिया आज़ादी का हथियार और जन जागरण का माध्यम बनकर सामने आई। इसने आम आदमी की भाषा में राष्ट्रवाद का संदेश भारत के घर घर में पहुंचाया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई एक पत्र निकले जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी का प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होने वाला यह अखबार क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। भगत सिंह जी ने बलवंत सिंह जी के नाम से इसमें लेख लिखे। साथ ही अन्य क्रांतिकारियों ने भी अपने विचार इस अखबार के माध्यम से प्रकाशित किए। विद्यार्थी जी की निर्भीक पत्रकारिता ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। पुष्प की अभिलाषा लिखने वाले कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने करमवीर के जरिए राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। चतुर्वेदी जी की भाषा ओजस्वी थी, जो युवाओं में देशभक्ति का जुनून पैदा करती थी। तिलक के केसरी ने भी

ही प्रिंट मीडिया को ऊंचाइयों तक ले जाने कुछ महान विभूतियों का योगदान इतना अधिक है कि जिनके बिना यह इतिहास अधूरा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए बोलचाल की हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाई। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी को नई चाल में ढाला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से उन्होंने हिंदी व्याकरण और वर्तनी का मानकीकरण किया। उन्होंने लेखों की भाषा सुधारी जिससे हिंदी पत्रकारिता को एक गंभीर और शुद्ध स्वरूप मिला। सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन अज्ञे ने दिनमान पत्रिका के माध्यम से समाचार पत्रों को साहित्य और संस्कृति के साथ जोड़ा। इसने हिंदी पत्रकारिता में भाषा के स्तर को काफ़ी ऊंचा उठाया। इनके अलावा प्रभात जोशी, राजेंद्र माथुर, बाण भट्ट, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी, महादेवी वर्मा आदि जैसे साहित्यकारों को हिंदी जन जन तक पहुंचाने में अद्वितीय योगदान रहा। प्रिंट मीडिया में हिंदी लोक भाषा के रूप में प्रिंट मीडिया और हिंदी भाषा का संबंध अत्यंत गहरा है। हिंदी को राजभाषा के सरकारी ढांचे से निकालकर जन जन की लोक भाषा बनाने में प्रिंट मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और उसके बाद समाचार पत्रों ने संस्कृत निष्ठ कठिन हिंदी के बजाय आम बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाया। स्थानीय समाचारों के माध्यम से इसमें ब्रज, अवधि, मैथिली और भोजपुरी जैसे शब्दों का समावेश हुआ। इससे हिंदी एक समावेशी लोक भाषा बन गई जिससे संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक महक शामिल है। भारत के प्रमुख 8 राज्यों में हिंदी का प्रयोग क्षेत्रीय बोलियों के साथ हुआ, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। हिंदी प्रिंट मीडिया ने न केवल समाचार पहुंचाए, बल्कि हिंदी को लोकतांत्रिक भाषा बनाया, क्योंकि इनकी पहुंच भारत के असली लोक यानी गांवों और छोटे शहरों तक है। हिंदी प्रिंट मीडिया द्वारा भारतीय समाज का सुधार हुआ। हिंदी समाचार पत्रों ने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाए। सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध लेख लिखकर समाज को आधुनिक और वैज्ञानिक सोच की ओर प्रेरित किया। पत्रिकाओं ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला। समाचार पत्रों के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी का परिष्कृत रूप विकसित हुआ, जो आज हमारी राजभाषा है। हिंदी प्रिंट मीडिया सरकार की नीतियों की आलोचना करने और आम आदमी की समस्याओं को सत्ता तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम रहा है। इससे स्थानीय मुद्दे जैसे कृषि, स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी, जिससे आमजन को अपनी बात कहने का मंच मिला। हिंदी प्रिंट मीडिया से संबंधित सम्मान। हिंदी प्रिंट मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पत्रकारों और साहित्यकारों को भारत में कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जाता है। ये पुरस्कार न केवल पत्रकारिता की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं, अपितु समाज के प्रति पत्रकारों की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हैं। हिंदी प्रिंट मीडिया से संबंधित कुछ प्रमुख सम्मान निम्न हैं, जैसे रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पुरस्कार, जो कि सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कारों में से एक है। इसके अतिरिक्त गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद पुरस्कार, कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान, माधवराव सप्रे राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, राजेंद्र माथुर सम्मान आदि प्रमुख हैं। हिंदी प्रिंट मीडिया का सफर एक जीवित सभ्यता के विकास जैसा है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को उद्दंत मार्तंड अखबार से शुरू हुआ था, इसलिए हर वर्ष
30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस

0: दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी प्रिंट मीडिया का माध्यम मर नहीं सकता, क्योंकि यह भारत के आम आदमी की भाषा में बात करता है। तकनीकी चुनौतियां आएंगी, लेकिन जब तक मनुष्य की जिज्ञासा जीवित है और सत्य को जानने की इच्छा है, तब तक कागज पर छपे काले अक्षरों की अहमियत कम नहीं होगी। हिंदी प्रिंट मीडिया को बस अपनी साख बचाए रखनी होगी, जिससे नया भारत हर क्षेत्र में प्रगति करता जाए। जिसके लिए प्रिंट मीडिया में हिंदी के योगदान को अनंत काल तक याद किया जाता रहेगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, प्रिंट मीडिया में हिंदी। वार्ताकार थे श्री देवेंद्र कुमार शर्मा। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म कामचोर के लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में इंदिवर की रचना। संगीत निर्देशन राजेश रोशन का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म काला पत्थर का ये गीत। गीत रचना साहिर की है और संगीत निर्देशन राजेश रोशन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मासूम का ये गीत। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत आर डी वर्मन साहब।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम। नमस्कार, शुभ

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में। और आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुमिता। श्रोताओं, निरंतर परिवर्तन के इस युग में अपनी धरोहर, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को सजो कर रखना, उसका संरक्षण करना, ताकि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ सके, अपने इतिहास को जान सके, और ये सब संभव हुआ संग्रहालयों के निर्माण से। आलीशान इमारतें, भव्य दीर्घाएं और उनमें संरक्षित अनमोल नायाब कृतियां, ये संग्रहालय ही है जो हमारे इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के परिचायक है। इन संग्रहालयों में हमारा इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति संग्रहित है, संरक्षित है। संग्रहालय लोगों को इतिहास से प्रेरणा लेने, सीखने और आनंद लेने के लिए संग्रहों का अन्वेषण करने में सक्षम बनाते हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कलाकृतियों और नमूनों को एकत्र करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें सुलभ बनाती हैं, जिन्हें वे समाज के लिए धरोहर के रूप में रखती हैं। जनता के लिए खुले, सुलभ और समावेशी होने के कारण संग्रहालय विविधता और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। श्रोताओं, संग्रहालय में ऐसी अनेक चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। संग्रहालय में रखी गई वस्तुएं प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती हैं। संग्रहालय में रखी तमाम वस्तुएं लेख लिपियों, हमारे पूर्वजों की यादों को जिंदा रखे हुए हैं। हर देश की संस्कृति को समझने में कई वस्तुएं विशेष योगदान निभाती हैं, जिन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रखा जाता है, और संग्रहालयों की विशेषता और उनके महत्व को समझते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में 18 मई यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जिसका उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर एक विषय भी निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य आम जनता, छात्रों और शोधार्थियों को विभिन्न संग्रहालयों में उपलब्ध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत देश में 40 से अधिक संग्रहालय हैं। श्रोताओं, हमारे देश का इतिहास, यहाँ की संस्कृति बहुत ही अनूठी, रोचक और किस्से कहानियों से ओतप्रोत है। कहते हैं लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं, और इन यादों को कई तरह से सजो कर रखा जाता है, जिससे कि हम भी उनके बारे में जान सकें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज तो हमारे लिए रख कर गए, लेकिन उसे नुकसान ना पहुँचे इसके लिए कई संग्रहालय बना दिए गए, जो हमें अपने पूर्वजों को, हमारी विरासत को याद रखने में मदद करते हैं। श्रोताओं, ये संग्रहालय वे स्थान हैं जो स्मृतियों और अतीत के अनुभव को पुनः जीवंत करते हैं। हमें भी चाहिए कि अपनी धरोहर को हम जानें, समझें, उसका संरक्षण करने में अपना सहयोग दें। संग्रहालयों में से देश के इतिहास, संस्कृति और समाज के बारे में बृहत जानकारी भी मिलती है। उस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी संग्रहालय का महत्व समझ आए। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर मिलकर इतिहास एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संग्रहालयों का संरक्षण करने का संकल्प लें, ताकि हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति को संजोया जा सके। हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, फिल्म इंडस्ट्रीज में भी कई गीत ऐसे बने जिनके फिल्मांकन में कोई ना कोई स्मारक
या सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया गया है। और ताजमहल फिल्म, ये फिल्म इसका सबसे सटीक उदाहरण है। इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रही है।

और श्रोताओं, अब चलते हैं कुछ खबरों और जानकारियों की तरफ। और आपको बता दें, पीएम जनमन और धरती आभा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 18 मई से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने इस 8 दिवसीय विशेष अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय परिवारों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। निर्धारित तिथि 18 मई यानी कि आज जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय अधिकारियों के ओरिएंटेशन के साथ इस अभियान का शुभारंभ होगा। अभियान के दौरान चयनित ग्रामों में अधिकारियों और सामाजिक संगठनों द्वारा व्यापक ग्राम संपर्क एवं पैदल यात्राएं की जाएंगी। इस दौरान मैदानी स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सघन वृक्षारोपण और प्रतिदिन स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आदि सेवा केंद्रों पर विशेष जन सुनवाई आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। नगर पालिका एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के अनुसार दिए गए निर्देशों के पालन में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 18 मई यानी कि आज शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। उद्यानिकी विभाग की PMFME योजना जिले के युवाओं के लिए स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना के माध्यम से कई युवा स्वयं को उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है शिवपुरी निवासी अभिषेक राठौर की, जिन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़कर अपना मसाला उद्योग स्थापित किया और आज अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उनके उत्पाद शिवपुरी जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी भेजे जा रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग की योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया कि केवल नौकरी के लिए परेशान न हो बल्कि रोजगार सृजन का मार्ग ढूंढें। वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी विकास खंडों में 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया। कृषि रथ निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार प्रतिदिन प्रत्येक विकास खंड का 3 ग्राम पंचायतों में भ्रमण करेंगे। इस दौरान कृषि विभाग की जन कल्याणकारी योजनाएं, ई विकास पोर्टल, प्राकृतिक खेती, नकाई प्रबंधन सहित पशुपालन, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी एवं मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं की जानकारी ग्रामीण जनों को दी जाएगी। प्रत्येक विकास खंड में तकनीकी दल के रूप में अधिकारी एवं वैज्ञानिक भी रथों के साथ मौजूद होंगे, जो योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ किसानों की समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशन में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस शिविरों का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं, नए कनेक्शन, बिल सुधार, नाम परिवर्तन और भार परिवर्तन का मौके पर ही निराकरण करना है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान करेरा उपसंभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वितरण केंद्रों पर संचालित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों को अपने कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। 18 मई को सुबह यानी कि आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक करेरा वितरण केंद्र ग्राम वार्ड नंबर 1 में, खैराघाट वितरण केंद्र ग्राम सिलानगर में, दिनारा वितरण केंद्र ग्राम बहादुरपुर में, नरवर वितरण केंद्र ग्राम कैरुआ में संचालित किया जा रहा है।
विद्युत विभाग ने अपील की है कि संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ता अधिक से अधिक संख्या में इन कैंपों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। इसके बाद आगामी शिविर 23 मई को भी निर्धारित स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे। और अब चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दें, आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री, न्यूनतम 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। वातावरण में नमी 18% जताई गई है और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो सखी सुमिता को कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। सुबह के 8 बजने को है, अब समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
3: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
4: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
3: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना

0: बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
3: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
5: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
8: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center, focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership, with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation. To commemorate the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to Sweden, both countries initiated the Tagore Sweden Lecture Series and exchanged unique gifts, including replicas of Tagore's handwritten epigrams found in Swedish archives. The presence of European Commission's President Ursula von der Leyen highlighted the visit's importance to the India-Euro partnership, with a renewed push for the India-Euro free trade agreement, described as the mother of all deals, to unlock new opportunities for innovators and investors alike.
9: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat.
8: Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
7: Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. Highlighting India's rapid economic transformation, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development in India.
10: Vodafone, Ericsson, Nokia, Orange जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI enabled networks, secure connectivity और digital inclusion में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
7: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary of West, C.B. George, said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent years,
11: which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
7: In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third Indian-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the Indian-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in Indian-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Satheeshan will be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram this morning. The Chief Minister-designate unveiled a 21-member UDF cabinet last evening ahead of today's swearing-in ceremony. More from our correspondent.
12: The Congress-led UDF ministry is being sworn in today in Keralam after a gap of 10 years. The Chief Minister and 20 other ministers will take oath at a function organized at Central Stadium, Thiruvananthapuram. 16 members of the new ministry, including Chief Minister V.D. Satheeshan, are becoming ministers for the first time. UDF workers in large numbers have been arriving in the state capital since yesterday afternoon to witness the swearing-in ceremony. Senior leaders, including Congress President Malik Arjun Kharge, leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, the chief ministers of Karnataka, Himachal Pradesh and Telangana, outgoing Chief Minister Pinarayi Vijayan and BJP State President Rajiv Chandrasekharan are expected to attend the ceremony today. Midhi M. Palluruthi, Akashwani News, Thiruvananthapuram.
7: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah arrived in Raipur last evening on a two-day visit to Chhattisgarh. During his visit to the state, Mr. Shah will participate in several programs in Raipur and Bastar. A report from our correspondent.
4: On the first day of his visit to Chhattisgarh, Union Home Minister Amit Shah will flag off new vehicles under the Emergency Response Service Dial 112 in Raipur this morning. Later, he will travel to Bastar and inaugurate a public convenience center at Netanar village in the district. The center is aimed at providing easier access to government and digital services for people living in remote areas. Thereafter, Mr. Shah will reach Jagdalpur and pay tribute to Martyrs at Amar Vatika. In the afternoon, he will interact at Badal Academy in Jagdalpur with families of martyrs, security personnel, people affected by Naxal violence and representatives of various local communities. In the evening, he will also attend the Bastar Ke Sang folk cultural program. This is Mr. Shah's first visit to the state after Chhattisgarh was declared Naxal free. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
7: The trail of the NEET paper leak case has now reportedly extended from Latur to Nanded in Maharashtra. A parent has been accused of purchasing the leaked question paper for 5 lakh rupees for his daughter. A CBI team questioned the individual yesterday and has summoned him to appear before the agency's Pune office tomorrow for further investigation. Meanwhile, in the same case, the Delhi Rouse Avenue Court has remanded Pune-based accused Manisha Mandhare to 14 days of CBI custody. According to the agency, Mandhare was a key conspirator in the leak of the NEET biology examination paper.
13: The India Meteorological Department has said that the southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date of 1st of June. Our correspondent reports that conditions are favorable for the southwest monsoon to advance into more parts of the southeast Arabian Sea, Bay of Bengal, Andaman Islands and Andaman Sea over the next 2 to 3 days.
5: IMD said Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Keralam and Mahe are like

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप ही के पसंद के फिल्मी नक में कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगला फरमाइशी गीत हम ले रहे हैं फिल्म स्वदेश से। आवाज अलका याग्निक की, जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ER रहमान ने, और इस गीत को सुनना चाहा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ जिला सागर से लक्ष्मण रेकवार, श्रीमती विनीता कुमारी, वैशाली वैष्णवी, अनरत हल्ले, लल्लू, ऋषि रेकवार और बड्डा। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए हमें खत आया है कमलागंज पावू क्वार्टर के पीछे से, श्रीमान कन्हैया कुशवाहा, भारती, ध्रुव, गगन, सोनम, अशोक, दुर्गेश, सुरेंद्र और सागर कुशवाहा। गुरु नानक कॉलोनी मौड़ापुर ग्वालियर से श्यामलाल बत्रा, लता, अंजलि, पलक, मिनी और रमन बत्रा। सुनिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगला फरमाइशी खत ले रहे हैं सखी रेडियो श्रोता संघ शिवपुरी से। हमारी सखियां हैं सोनिया, दीपिका, निधि, नीना, अंजू, अलका, विनीता, अंकिता, सोनम, सलोनी, अर्चना, अल्पा, सोनाली, पूजा, खुशबू, शालिनी, शिप्रा, रिचा और इनकी सभी सखियां। न्यू ब्लॉक शिवपुरी से श्रीमती निर्मला देवी, संध्या, मोनिका, तरुण, अरुण, अभय, जया, अमन, शुभम, अक्षय, विहान, डॉली और परिवार के इनके सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म खट्टा मीठा का ये गीत, आवाज़ के और सुनिधि चौहान की। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: संदेशों के बाद स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और श्रोताओं, अगला फरमाइशी गीत हम ले रहे हैं फिल्म फना से, आवाज शान और कैलाश खैर की। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने, और इस गीत को सुनना चाहा है गांधी कॉलोनी शिवपुरी से सौरभ गौड़, ममता, कृष्णा, इशिता और परिवार के इनके सदस्य। राजपुर मध्य प्रदेश से गीजू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरव और कुणाल दिलवारे। पुरानी छावनी सकतपुर और जिला गुना मध्य प्रदेश से कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार, गोलू, कृष्णा, वर्षा, पूनम और मोहिनी कुशवाहा। सुनिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप ही की पसंद के फिल्मी नगमे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगला खत ले रहे हम अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरव, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडन एवं समस्त परिवार, ग्राम बिजौरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से गोलू अहिरवार, दिनेश, अजय और परिवार के इनके सभी साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म जोधा अकबर का ये गीत, आवाज जावेद अली की, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत ए आर रहमान साहब का। और श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी ही संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अंकुश यादव और ज्वाला प्रसाद सेन के गाए कुछ लोकगीत। शुरुआत कर रहे हैं अंकुश यादव के गाए इस लोक भजन से।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे अंकुश यादव के आवाज़ में ये लोक भजन कार्यक्रम लोक रंग में। लीजिए आप सुनिए ज्वाला प्रसाद सेन के आवाज़ में ये चौकड़िया लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम लोक रंग में ले जाए, आप सुनिए अंकुश यादव के स्वर में ये लांगुरिया लोकगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: संदेश के बाद स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम लोक रंग में। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ज्वाला प्रसाद सेन के स्वर में ये गहरा

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए अब सुनिए अंकुश यादव के स्वर में ये बुंदेलखंड।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। कार्यक्रम में आज कलाकार थे अंकुश यादव और ज्वाला प्रसाद सेन। कार्यक्रम लोकरंग अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें खत आया था नेपाल पैलेस सागर से तिरकराना, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। रिकनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म दिलवाले से। आवाज़ कुमार सानू की थी, गीत लिखा था समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था। अगला फरमाइशी खत हम ले रहे हैं महादेव घाट हमलेश्वर से डोमन ठाकुर, श्रीमती सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी और सूरज ठाकुर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम, मिलिंद, दोवेश, अंबिका और योगिता नेताम। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत, आवाज़ अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप ही के पसंद के कुछ फिल्मी नगमे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अगला फरमाइशी गीत हम ले रहे हैं फिल्म खलनायक से, आवाज अलका याग्निक और साथियों की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनना चाहा है जय संजय रेडियो श्रोता संघ ग्राम व पोस्ट छित्री तहसील नरवर जिला शिवरी से हमारे श्रोतागण हैं संजय कुमार केवट, नवल किशोर, मुकेश, भीकम, अंकित, प्रशांत, मयंक, दिलीप, देव, हिमानी, राखी, वर्षा, लक्ष्मी, गिरजा, भावना, रेखा, किरण, छाया, कृष्णा, अंजलि और समस्त मित्र मंडल। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम व पोस्ट धैरो तहसील कोलारा जिला शिवपुरी से डॉक्टर शिव नारायण अग्रवाल, राम निवास, मिदाम चिटार, मुंशी ढाकर, सूरज सिंह रावत, देवेंद्र रावत, मोहन सिंह रावत। सुनिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दामिनी से, आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरंगी से द्वारिका प्रसाद, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार। और इसी गीत के लिए खत हमें आया है ग्राम दुर्गापुर पोस्ट बडेरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी से मानसिंह आदिवासी श्रीमती मीना देवी, बिटिया वैष्णवी, भावना, पुष्पा, सतेंद्र, राहुल, राजकुमार, हरविलास, भूरी, श्रीमती इमरती आदिवासी, श्री मनालाल जी एवं समस्त आदिवासी परिवार। सुनवा रहे हैं श्रोताओं आप सभी की पसंद का फिल्म दामिनी का ये गीत।

और श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हमारी इन श्रोताओं की पसंद पर फक्कड़ कॉलोनी शिवपुरी से लाखन डोंगर, बबली डोंगर, राधिका, सारा, मिनी, आरती, पूजा, समस्त डोंगर परिवार और राम भरत जाटव, चंदा जाटव, यश जाटव, लीला और ईश्वर लाला, ये सभी सुनना चाहते हैं हम है राही प्यार के इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ कुमार सानू अलका याग्निक की, समीर का लिखा ये गीत और संगीत नदीम श्रवण का। सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10 बजने को है। अब कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी। तब तक सुनते रहिए ये गीत।

से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भोपाल में इन दिनों गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आ रहा है। कल शहर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को धूप और लू से बचने की सलाह दी है। MVM कॉलेज में NCC के पूर्व कैडेट्स का चौथा एलुमनी फंक्शन आयोजित किया गया, जिसमें 1975 से अब तक के पूर्व कैडेट्स और नेवी ऑफिसर्स शामिल हुए। अब MP लॉकर एप्लीकेशन के जरिए लोगों को नगरी सेवाएं भी मोबाइल पर मिलेंगी। इसमें संपत्ति कर, जल कर और लाइसेंस समेत 22 से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। उन्होंने लोगों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की। भोपाल से छोड़ा गया एक दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध 24 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर उड़कर उज्बेकिस्तान पहुंच गया है। इस दौरान उसने राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सफर तय किया। वन विभाग ने उसकी पूरी यात्रा पर नजर रखी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में जूस और लस्सी की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। मिलावट की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। रानी कमलापति स्टेशन के पास बंसल वन बिल्डिंग में NSG ने हाई इंटेंस

सिटी मॉक ड्रिल का आयोजन बीते दिनों किया। आतंकियों से बंदूक छुड़ाने और सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल का अभ्यास इस मौके पर किया गया। मानसून से पहले डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर शहर में बीते दिनों रैली, नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बचाव के उपाय बताए गए। रविन्द्र भवन में आयोजित नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान समर्थ दृष्टि साधना के शिखर पुस्तक का विमोचन किया गया और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में पेट्रोल 109.70 रुपए और डीजल 95.04 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया अब 28,000 वर्ग किलोमीटर तक विकसित किया जाएगा, जिसमें कई जिलों की तहसीलें और हजारों गांव शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने ओबीसी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों चयनित युवाओं को प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। आईपीएस शैलेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल में डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शहर की शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भोपाल में किरायेदारों, पीजी में रहने वालों और होटल लॉज में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को देना अब जरूरी होगा। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बीते दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किए गए। भोपाल के पास बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने के अभियान के दौरान एक प्राचीन जल स्रोत मिला है, जिसे पार्वती कुंड नाम दिया गया है। सफाई के बाद इसमें फिर से पानी निकलने लगा। जनगणना 2027 के तहत भोपाल में अब तक 3,60,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। बेहतर काम करने वाले प्रगणकों को सम्मानित भी किया गया। बारिश के मौसम में सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए नगर निगम ने उन्हें रेन किट वितरित करना शुरू किया है। पहले चरण में 105 सफाई मित्रों को किट प्रदान की गई। रविन्द्र भवन में बीते दिनों आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 101 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। भोपाल जिला न्यायालय में बीते दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के मामलों में राहत दी गई और कई विवाद आपसी सहमति से निपटाए गए। बीते दिनों तुलसी नगर स्थित नगर निगम के नए अटल भवन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में अब नगर निगम के सभी दफ्तर एक ही जगह काम करेंगे। भोपाल से पहली बार बीते दिनों सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना हुई। मुख्यमंत्री ने रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले बीते दिनों किए। नई जिम्मेदारियां एडीजी से लेकर डीसीपी स्तर तक के अधिकारियों को सौंपी गयी। भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बीते दिनों घोषित किए गए, जिसके तहत 12वीं में 76% और 10वीं में 73% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट में बाजी मारी। भोपाल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज फनकार हैं ऋचा शर्मा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार है ऋचा शर्मा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला नाटक।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम में आज कलाकार है ऋचा शर्मा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्ते अमिता दीदी। लास्ट
0: कभी
1: बार आपसे ही बात हुई थी। देखिए, आज लगाया बहुत दीदी, लगी रहती हूँ, लग जाता फोन।
0: ये बात सही है। कुछ श्रोता हमारे सच में बहुत लकी हैं,
1: नहीं,
0: उनका
1: आपसे
0: कॉल।
1: बात हुई थी, उसके बाद आप ही फोन लगाए। 15 दिन तो हो गए आराम से। हाँ,
0: अच्छा। शुभ नाम बताइए अपना थोड़ा
1: मैं
0: सा।
1: बरेला की वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ दीदी,
0: हाँ, कहाँ से?
1: बरेला जबलपुर।
0: बरेला, जबल।
1: वंदना उपाध्याय भूल गई दीदी, बेल का शरबत पूछा था आपने।
0: नहीं, आप मुझे
1: हाँ,
0: गलत समझ रही हैं। आप कौन सी दीदी समझ रही हैं?
1: अमिता दीदी।
0: अमिता नहीं, कविता। हम लोगों की आवाज में फर्क नहीं दिखा आपको?
1: मुझे तो आप वैसी लग रही। अच्छा, कविता दीदी, आपसे भी मेरी
0: जी
1: बात हो चुकी है।
0: हाँ,
1: हाँ।
0: हम लोग तो बहुत अलग हैं। आपने कैसे हमको अमिता दीदी समझ लिया?
1: तो क्या हुआ ना,
0: नहीं,
1: आप
0: वो
1: बोल
0: बहुत
1: रही थी
0: सीनियर है, बहुत अच्छी वॉइस है उनकी।
1: बहुत अच्छी है। और मैं वही तो, कोई बात नहीं,
0: चलो कोई बात
1: अमिता
0: नहीं,
1: दीदी से
0: अमिता
1: तो
0: दीदी ना
1: कविता
0: सही,
1: दीदी
0: कविता
1: से
0: दीदी सही।
1: नमस्ते कविता दीदी, आपसे भी
0: नमस्ते।
1: मेरी बात हो चुकी है वैसे तो। हाँ, तो कैसे हैं
0: अच्छा,
1: दीदी आप?
0: हम अच्छे हैं। आप बताइए, आपके क्या हाल है?
1: बढ़िया है।
0: गीत बताइए, आज कौन सा गीत सुनने का मूड है आपका?
1: कौन सा गीत? रेडियो बंद करूं पहले मैं। पसंद
0: कोई सा भी अपनी पसंद का बताइए।
1: का? पसंद का? अब आपसे बात हो रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गाना बोलूं। पहले बोलती ये बोला वो बोलूंगी, ऐसा सुनूंगी। ठीक है, मैं बोलती हूँ वो वाला सुना दीजिए, चुरा लिया है तुमने
0: अच्छा,
1: जो दिल
0: यादों की
1: को।
0: बारात फिल्म का।
1: हाँ,
0: ठीक है।
1: और आप बोल रही थी कि रानू गुप्ता का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ कि वो फोन क्यों नहीं कर रही है।
0: हाँ, मैं
1: हाँ,
0: भी इंतजार कर रही हूँ भाई, बहुत लंबा टाइम हो
1: उनके
0: गया है, क्यों नहीं आ रहा है
1: लिए
0: फोन।
1: गाना डेडिकेट। और हमारे दो फ्रेंड हैं, विपिन कटारे जी
0: हाँ
1: और नंदिनी, ये
0: हाँ ये
1: सब फ्रेंड सर्कल टाइप का बन गया। जब आता नहीं तो इंतजार करते हैं कि यार इसका फोन
0: सच
1: आ रहा
0: बात है,
1: नहीं है,
0: सच
1: ऐसा
0: बात
1: भी।
0: है। कुछ लोगों से अपन
1: हाँ,
0: भले ही मिले नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी उनसे पुराना
1: वो
0: रिश्ता
1: तो
0: है।
1: अच्छी बात करती थी, बढ़िया मस्त मजा आता था। वो लगाती थी फोन, तो
0: हाँ
1: मैं भी वेट कर रही हूँ जैसे आप वेट कर रही हो उनके फोन का, तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ। ये मैसेज रानू गुप्ता तक पहुंच जाना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल,
1: आपको
0: कल
1: याद कर
0: पहुंचेगा,
1: रहा है।
0: लेकिन कल
1: हाँ
0: सुनेंगे ना सब प्रोग्राम, तो कल आपका मैसेज पहुंचेगा और परसों कॉल करेंगे, देखिएगा।
1: बहुत
0: चलिए वंदना जी, आपसे
1: दीदी, बहुत
0: बातचीत
1: अच्छा
0: करके
1: लगा
0: बहुत
1: आपसे
0: अच्छा
1: बात
0: लगा।
1: करके।

0: हेलो
1: उठ तो जाओ। हेलो
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी मैम, हम ग्रामपुर जिला सरायपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
0: संगीता जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: ग्रामपुर छतापुर से। जी
0: छतापुर।
1: जी मैम।
0: अच्छा, और कैसी हैं आप?
1: जी मैम ठीक है, आप कैसी हैं? आप
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: जी घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं मैम।
0: घर का काम करना भी आसान थोड़ी ना होता है।
1: जी
0: और
1: आप
0: घर में
1: कविता
0: कौन कौन
1: मैम
0: है?
1: बोल रही हैं? कविता
0: हैं?
1: मैम बोल रही हैं आप?
0: जी कविता मैडम बोल रहे हैं, आपने पहचान लिया।
1: जी मैम आपकी आवाज बहुत सुंदर है। जी
0: थैंक यू, आवाज भी सुंदर होती
1: मैम जब
0: अरे वाह,
1: पसंद हो तो उसका सुंदर पसंद होती है। जी
0: तो आपकी नजरें बहुत सुंदर हैं, इसका मतलब पता है। अच्छा बताओ संगीता, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मैम, हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत पड़ रही तो इसीलिए सुनना चाहते हैं, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं।
0: ओहो, दोपहरी में पांव जले, ये वाला
1: जी
0: मिल
1: जी
0: जाएगा?
1: मैम
0: ये वाला गीत है,
1: हाँ
0: सुना है पहले? कौन सी
1: हाँ
0: फिल्म
1: कई
0: का
1: बार
0: है?
1: सुना है मैम।
0: अच्छा, कौन सी फिल्म का है ये गीत?
1: फिल्म तो पता नहीं, वो ऐसे ही जट की दोपहरी में पांव जले है, सही है पांव जले।
0: चलिए कोशिश करते हैं, अगर ये गीत नहीं मिला तो
1: सुनवा देना बाल माँ का। जी
0: बाल माँ का। हाँ, ये तो गीत बहुत
1: जी
0: प्यारा है।
1: आपसे बहुत दिनों बात हुई, हमको तो याद
0: बाल माँ
1: नहीं
0: का
1: है
0: कौन सा, ये
1: वैसे
0: तो
1: भी,
0: बताओ।
1: लेकिन और मैम जी हमसे तो होती रहती है जी।
0: अच्छा, ये
1: आपसे
0: तो बताओ
1: कोई
0: कि है ना, बालमा फिल्म का कौन सा गीत?
1: सा भी सुनवा देना।
0: अच्छा ठीक है ठीक
1: जी
0: है। चलो संगीता जी, कॉल किया आपने और बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, दिल खुश कर दिया।
1: जी मैम, हमको तो आपसे और मैम से किसी भी ऐसी बात हो तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा ही खुशी होती है।
0: चलो थैंक यू कॉल करने के
1: लेकिन
0: लिए।
1: जितना हमें गाना सुनने में वो नहीं है, लेकिन आपसे बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है। जी
0: चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते। ग्राम
0: नमस्ते जी। शेख
1: सुराना, जिला रतलाम से बोल रहा हूँ। शेख हैदर खान। हैदर खान?
0: जी, आपसे शायद पहली बार बात हो रही है शेख हैदर खान जी।
1: नहीं, मैडम, मैं लगाता रहता हूँ, कभी कभी टाइम मिल जाता है तो। मैडम,
0: अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
1: मैडम मैं तो यूँ तो किसान हूँ, खेती का काम है,
0: अच्छा जी।
1: और आकाशवाणी का बहुत पुराना श्रोता भी हूँ मैं। हाँ,
0: चलिए, तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये फिल्म निकाह का गीत तो सुना दीजिए।
0: हाँ
1: ये दिल की आरजू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज में गीत है।
0: हाँ बहुत प्यारा गीत है ये।
1: हाँ
0: बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन कल सुन पाएंगे आप? ये 11 से 12 बजे के बीच में ये प्रोग्राम
1: हाँ सुन
0: है।
1: लेना ना मैडम, एडियो पे सुनता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनिएगा और 1 हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: ओके ओके, है ना।
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते।
1: बाग से बोल रही हूँ मैम,
0: कहाँ से? अच्छा,
1: बाग जिला धार
0: धार जिला से। कौन बोल रही है?
1: बाग। हाँ,
0: कौन बोल रही है
1: हीरू जी बोल रही, हीरू।
0: जी? हीरो।
1: हाँ, बाग से।
0: अच्छा। बताइए, क्या हाल है आपके?
1: आप बढ़िया? आपके कैसे हैं? बढ़िया हो के?
0: हाँ, बढ़िया बढ़िया। और
1: कैसे
0: धार
1: है?
0: में कैसी
1: गर्मी
0: पड़ रही है गर्मी?
1: गर्मी तो इधर भी है। था
0: बहुत ज्यादा है ना।
1: हाँ,
0: कौन सा गीत सुनना है आज?
1: कौन सा गीत? वो क्या नाम रे, कौन सा, कोई सा भी सुना दो आप।
0: कोई सा भी सुना दें?
1: हाँ
0: चलो, बहुत अच्छी बात है। ये तो आप बहुत ही अच्छी बात बोल रही हैं। हम अपनी पसंद का कोई सा भी गीत सुनवाएंगे आपको, लेकिन निराश नहीं होंगी, वो गीत आपको जरूर पसंद आएगा।
1: हाँ
0: ठीक है हीरो।
1: मेरा मेरा पति मेरा देवता है, वो सुना दो।
0: अच्छा चलो, मेरा पति मेरा देवता है।
1: जैसा है मेरा पति,
0: हाँ
1: अच्छा है
0: चलिए, ठीक है ठीक है,
1: वो बना
0: वही
1: बनाना।
0: सुना देंगे, वही सुना देंगे। चलिए, कॉल
1: हाँ
0: करने के लिए
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति कविता रावत की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ़ ये ट्रैफिक,
2: आकाशवाणी है ना?
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर हैं। एक पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच और उनके साथ भारत की मित्रता के दायरे को बढ़ाएगा। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 16 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी, वहीं मतदान 18 जून और मतगणना 22 जून को होगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए प्रदेश में आज व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को समझ सकेंगे। वहीं मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा सहित प्रदेश के 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं क्रिकेट की खबर में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की पसंद पर हमने लिया है फिल्म साजन से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और गीत लिखा है समीर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। आदर्श नगर मलोट से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा की। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म साजन का ये गीत।

साहिबान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत था शिव हरि का। पसंद आप सभी श्रोताओं की थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। पसंद आप सभी श्रोताओं की है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। साथ ही राजारामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, राकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और कमल निगम। आप सभी की फरमाइश है फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत सुनने की, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल ने, बोल रानी मलिक के हैं और संगीत है नदीम श्रवण का। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, लीजिए अब सुनिए फिल्म त्रिदेव का गीत मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीता बिरक की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की। तो लीजिए सुनिए फिल्म त्रिदेव का ये गीत।

बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय सुनना चाहते हैं फिल्म रंग का गीत। आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं, गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफ़र जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 5वीं कड़ी।

श्रोतागण प्रणाम। कैसी लग रही हैं छोटी छोटी कहानियाँ? आनंद आ रहा है ना? पिछली कथा में मैंने सुनाया था कि दमनक ने करकट को छोटी छोटी कहानियों से ये

0: संजीवक और पिंगलक की मित्रता तोड़ी जा सकती है।
1: हाँ मित्र, मैं भी अपने बुद्धि के प्रभाव से उनमें फूट डालकर उनकी मैत्री को भंग कर दूंगा।
0: यदि आपको पूर्ण विश्वास है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए, हमारा मार्ग मंगलमय हो।
2: आओ आओ दमनक, क्या समाचार है? आजकल दिखते नहीं, साथियों के क्या समाचार हैं?
3: श्रीमान को तो अब हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है और ना ही किसी अन्य पशु का। फिर भी अभयदान हो तो कुछ कहूं महाराज?
2: निर्भय होकर कहो दमनक, हमें ज्ञात है कि आप हमारे शुभचिंतक हैं।
3: मैं आपकी शांति भंग करने कभी नहीं आता महाराज, परंतु राज कार्य की हानि देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा तो मैं चला आया।
2: आपको बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हैं वही कहें।
3: देव, वो संजीवक आपके प्रति विद्रोह का भाव रखता है। वो आपको मारकर संपूर्ण वन प्राणियों का स्वामित्व धारण करना चाहता है।
2: दमनक, तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कह रहे हो? संजीवक और मैं भ्रातुतुल्य मित्र हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता चला?
0: महाराज, मुझे वो अपना विश्वस्त समझता है एवं मुझे इस जंगल के मंत्री पद का लोभ भी दिखाता है महाराज।
2: संजीवक मेरे प्राण हैं, वो मेरे प्रति द्रोह बुद्धि रख सकता है, ये मेरी कल्पना से परे है। इतना सब कुछ सुनने पर भी उसके लिए मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे प्रिय व्यक्ति के विपरीत आचरण करने पर भी वो प्रिय ही लगता है।
3: इसीलिए तो राजद्रोह जैसा दोष उत्पन्न होता है। एक बात बताएं महाराज, आप किसी विशेष गुण के कारण उस निर्गुण संजीवक को अपने सन्निकट स्थान देते हैं। देव, यदि ऐसा सोचते हैं कि वो रिष्टपुष्ट बलवान आपके शत्रुओं को मारने में आपकी मदद करेगा तो ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो शाकाहारी है और आप मांसाहारी हैं। अतएव महाराज, मेरी मानिए तो कोई उपाय करके आरोप लगाकर उसे खत्म कर दें।
2: मैं क्या उपाय करूं? दमनक, उसे मैं अभयदान दे चुका हूं, स्वयं उसकी हत्या कैसे करूं? संजीवक मेरा मित्र है। सच कहते हैं कि पहले तो किसी से स्नेह नहीं करना चाहिए, और यदि स्नेह कर ही लिया गया है तो उसमें प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। स्नेह से किसी को ऊपर चढ़ाकर गिराना नहीं चाहिए।
3: जी महाराज।
2: तभी तो द्रोही होने पर भी मुझे उसके साथ विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए।
0: स्वामी, द्रोही व्यक्ति को क्षमादान देना राजधर्म नहीं है, अन्यथा राजा स्वयं ही उसके हाथों मारा जाता है महाराज। एक बात और, संजीव

यही सबसे बड़ा प्रमाण है। महाराज, कल प्रातः काल वो संजीवक क्रोध से लाल मुख और आंखें लेकर अपने अधरों को फड़फड़ाता हुआ आपकी ओर देखेगा। आप समझ लेना, फिर जो आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। मुझे आपको सूचित करना आवश्यक था, सो ही मैंने किया। आखिर आप जाने महाराज।

0: क्या बात है संजीवक जी, कुछ शांत प्रतीत होते हैं।
1: आओ मित्र, आपका स्वागत है। सकुशल हैं?
2: सेवक जन की कुशलता होती कहाँ है?
1: आखिर आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मित्र, मंत्रियों के लिए गुप्त मंत्रणा का उद्घाटन करना उचित नहीं। जो व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त होने पर भी राजा की रहस्यात्मक बातों को सार्वजनिक कर देता है, वो राजकार्य में हानि के अपराध में नरकगामी होता है।
1: आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो महाराज का मित्र हूं।
0: आपका हृदय तो निश्चल है, परंतु वो पिंगलक आपके ऊपर दुष्ट बुद्धि रखता है। उसने आज एकांत में मुझसे कहा भी है कि वो कल प्रातःकाल होते ही आपको मारकर बहुत दिनों बाद सारे साथियों को तृप्त करे। मैंने उन्हें कितना समझाया कि ये कृत्य उचित नहीं है, आप पर मित्र द्रोह का पाप लगेगा, तो वो मुझे बुरा भला कहने लगे और कहा कि वो मांसाहारी हैं और आप शाकाहारी, इसी कारण आप उनके जातिगत शत्रु हैं और शत्रु को किसी भी उपाय से मारना पाप नहीं है। इसी कारण मैंने आपके सामने रहस्य खोल दिया। अब आप जो उचित समझे वो करें।
1: दमनक, क्या यह संभव है किसी के इतने निकट रहकर उससे बैर किया जा सके?
3: मैं
1: मैं तो चेतना शून्य हो रहा हूं। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता से यह समझता है कि मैं राजा का प्रिय हूं, उसे सींग रहित वृषभ के समान समझना चाहिए।
0: हाँ,
1: मैंने पिंगलक के साथ मित्रता करके बहुत बड़ी भूल की है। अब तक तो उसके साथ ही मेरे विरुद्ध हो चुके होंगे। अब तो मेरे समझाने का भी कोई अर्थ नहीं होगा।
2: सही कह रहे हैं।
1: अब मुझ जैसे निरपराध व्यक्ति के विषय में कोई बातें नहीं सुनेगा।
0: मित्र, यदि यही बात है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पिंगलक से मिलें, अपने वाक चातुर्य से उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। मैं आपके साथ हूं।
1: तुम्हारा प्रेम मैं समझ सकता हूं, परंतु सभासद, सभासद अगर दुष्ट हो तो भले लोगों का वहां रहना कठिन होता है। वे किसी ना किसी उपाय से भले लोगों को मार डालते हैं।
2: ये आप कैसे कह सकते हैं?
1: तो सुनो, किसी वन में मदोत्कट नाम का एक सिंह रहता था। उसके बाघ, श्रीगाल और काक, ये तीन अनुचर थे। एक दिन उन लोगों ने कथनक नामक एक ऊंट को देखा जो वन में अकेले भटक रहा था।
0: अच्छा,
1: उसे देखकर मदोत्कट सिंह ने कहा,

0: ये तो कोई अपूर्व जीव है। लगता है साथियों से बिछड़ गया है। ये वन का है या ग्राम जीव?
1: स्वामी, कथनक नाम का ये ऊंट गांव का है। ये आपका भक्ष है, आप इसको मार डालिए।
0: नहीं नहीं, मैं घर आए अतिथि को नहीं मारता। शत्रु भी अगर अतिथि बनकर आए तो उसे मारने से पाप लगता है, अतः उसे अभय दान देकर यहाँ ले आओ, जिससे मैं उससे यहाँ आने का कारण पूछ सकूं।

0: महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, आपकी आज्ञा से कथनक को मैं ले आई।
1: कहिए कथनक जी, आप गांव से जंगल की ओर कैसे भटक गए?
2: महाराज, मैं अपने सार्थवाह और साथियों से बिछड़ गया हूँ। भूखा प्यासा धूप में भटक रहा हूँ, पता नहीं कब मालिक के पास पहुँचूंगा।
1: मित्र, अब जब आप गांव से वन आ ही गए हैं, तो अब पुनः गांव जाकर भार ढोने के कष्टकारक काम की क्या आवश्यकता है? इसी वन में निर्भय होकर निवास करें और कोमल घास को चरें।
2: महाराज की जय हो।
3: तब से ही वो कथनक मदोत्कट एवं उसके अनुचरों के साथ सानंद रहने लगा। एक दिन मदोत्कट का किसी जंगली हाथी के साथ भीषण युद्ध हुआ। हाथी के मूसल समान दांतों के प्रहार से सिंह को बड़ा कष्ट हुआ। भयंकर पीड़ा को सहकर भी वो बच गया, परंतु शरीर के शक्तिहीन हो जाने के कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। उसके पराक्रम के अभाव से अनुचर भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगे।
1: बाघ, शगाल, आप जाकर ऐसे किसी जीव की खोज करें जिसे इस अवस्था में भी मैं मार सकूं और आप सबके भोजन का प्रबंध कर सकूं।
4: जो आज्ञा महाराज।
5: प्रिय बाघ भाई, हम सब तो बहुत भटक चुके हैं, भूख भी लग रही है।
4: बहुत अधिक भटकने से क्या लाभ। मेरे ध्यान में एक योजना आई है जिससे हमारा पेट भी भरेगा और दूर भी नहीं जाना पड़ेगा।
0: तो इस उपाय को बताने में विलंब क्यों, शीघ्र बताएं।
4: ये कथनक हमारे किस दिन काम आएगा? आज इसी को मारकर भोजन किया जाए।
0: हाँ, आप ठीक कहते हैं। परंतु स्वामी ने तो इसे अभयदान दिया है, आप और हम इसे कैसे मार सकते हैं?
5: मित्र काक, मैं स्वामी को समझा कर इस बात के लिए सहमत कर सकता हूँ कि वो इसे मारने को तैयार हो जाएं।
0: वाह,
5: आप लोग यहीं ठहरिए,

0: मारने को तैयार हो जाएं।
1: वाह,
0: आप लोग यहीं ठहरिए।
2: यदि फिर कभी ऐसी बात कहोगे तो तुम्हें उसी क्षण मार डालूंगा। तुम्हें ज्ञात नहीं, मैंने उसे अभयदान दिया है। उसे मैं स्वयं कैसे मार सकता हूं?
0: धृष्टता क्षमा करें महाराज, यदि आप उसका वध करते हैं तो निसंदेह दोष आपको लगेगा, परंतु यदि स्वामी भक्ति के कारण वो स्वयं जीवन का बलिदान करता है तब तो कोई दोष नहीं।
2: ये कैसी अनर्गल बात है, वो स्वयं ऐसा क्यों करेगा?
0: अगर कथनक ऐसा नहीं करता है तो आप हम तीनों में से किसी को भी मार कर अपना भोजन बना लीजिएगा। यदि स्वामी की रक्षा में हम इतना भी नहीं कर सकते तो स्वामी के अनिष्ट होने पर हमें तो वैसे भी अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा।
2: ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो।
3: फिर तीनों ने दुष्ट चाल चली और कथनक को लेकर मदोत्कट के पास जाकर बैठ गए।

0: स्वामी, हम संपूर्ण वन घूमाए, ना तो कोई जीव मिला ना ही दिखाई पड़ा। प्रभु, आज आप मुझे ही खाकर अपने प्राणों की रक्षा करें, जिससे आपको थोड़ी शक्ति मिले और मुझे सदगति, क्योंकि अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है।
1: फग्निका, आप नारी हैं और अल्पकाय हैं, आपसे स्वामी का पेट नहीं भरेगा, अपितु जीव वध का पाप भी लगेगा। आपने अपनी स्वामी भक्ति तो दिखा दी, स्वामी से उदर पूर्ति ग्रहण करने का ऋण भी चुका दिया, दोनों लोकों में आपकी प्रशंसा भी हो चुकी। अब आप स्थान ग्रहण करें ताकि मैं स्वामी से कुछ कह सकूं।
0: आप बड़े हैं श्रीगाल भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
1: स्वामी, सेवक का जीवन स्वामी के अधीन होता है, वो समय आने पर उसे लेने से पाप का भागी नहीं होता, तो देर ना करके मेरे शरीर से भोजन ग्रहण करके जीवन निर्वाह किया जाए और मुझे तीनों लोक में यश का भागी बनने दिया जाए।
2: मित्र श्रीकाल, आप महाराज के सजातीय भी हैं और अल्पकाय भी, नाखून लंबे होने के कारण आप अभक्ष्य भोजन हैं। थोड़ा सा अभक्ष्य भोजन करके अपना परलोक क्यों नष्ट करना? वैसे आपने कुलीन होने का जो परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है, परंतु अभी मैं स्वामी के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
1: ठीक है बाग मामा, जैसा आप चाहें।
2: महाराज, आज मेरे शरीर से भोजन किया जाए, मुझे स्वर्ग का अक्षय वास दिया जाए, पृथ्वी पर मेरे यश का विस्तार हो। अब इस विषय में कोई भी विकल्प न सोचा जाए महाराज, मुझे ग्रहण करें, मुझे ग्रहण करें महाराज।
3: इन सभी ने मीठी बातों से स्वामी के हृदय में अपना स्थान बना लिया। प्रभु ने किसी को भी नहीं मारा। मैं भी सही समय में स्वयं को निवेदन कर दूं, मेरी बात सुनकर सब मेरी प्रशंसा करेंगे और स्वामी मुझे नहीं खाएंगे। बाघ मामा, आप ठीक कहते हैं, परंतु आप भी तो नखयुक्त जीव हैं, आपके मांस को भी स्वामी कैसे खा सकते हैं? कहते हैं जो मन से भी अपनी जाति का अनिष्ट चाहता है उसका दोनों लोकों में अनिष्ट होता है। अतः मामा, आप हट जाएं ताकि मैं स्वयं

0: स्वयं को प्रस्तुत कर सकूं?
1: नहीं कथनक, आप तो अतिथि हैं, आपको कैसे मार सकते हैं?
0: स्वामी, ये सभी आपके भोजन के लिए अयोग्य हैं, अतः आज मेरे शरीर से जीविका चलाई जाए। महात्मा साधुजन वर्षों की तपस्या से जिस सदगति को प्राप्त करते हैं, वो एक श्रेष्ठ सेवक स्वामी के लिए प्राण देकर प्राप्त कर लेता है।
2: आप बिल्कुल सही कहते हैं कथनक, आओ साथियों, आओ।
3: मा! मा!

0: कथनक के निवेदन को सुनकर सिंह की आज्ञा से श्रगाल तथा व्याघ्र ने मिलकर उसे फाड़ डाला। कथनक का प्राणांत हो गया। सिंह के साथ भूख से पीड़ित अनुयायियों ने कथनक को खा डाला। ये कहानी सुनाकर संजीवक ने दमनक से कहा,
1: अम्मा समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं।
2: मेरे विचार से आप कहीं विदेश भाग जाएं।
1: नहीं नहीं, जब पिंगलक क्रुद्ध है तो मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए।
2: अरे ये दुष्ट तो युद्ध के लिए प्रस्तुत जान पड़ता है। इसने अगर अपने तीखे सींगों से स्वामी पिंगलक पर प्रहार किया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से इसे अन्यत्र भेजना होगा। मित्र आप ठीक कहते हैं, पर स्वामी और भृत्य में संग्राम होना उचित नहीं है। क्योंकि कहते हैं बलवान शत्रु को देखकर उत्तेजित होना मूर्खता है। ऐसे में अपमानित होना पड़ता है जैसे टिप-टिप को होना पड़ा समुद्र के सामने।
0: और फिर उस दुष्ट दमनक ने संजीवक के मन में पाप भर दिया। फिर उसे वहां से भाग जाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचकर सुनाने लगा, जिसमें टिट्टेब और समुद्र की कथा सुनाई। पर वो कथा आप सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Rotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण

0: iş yer dika pokran dika Miss World dikhi World Cup dikha Chandrayaan dikha Insat dikha Nayi kahaniyon ne naya Bharat likha
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जोनास टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें पांच नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्जवल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे जिनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। एशिया संकट के बीच 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर एक जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। मार्च के शुरू से 12 एलपीजी टैंकर्स और एक कच्चे तेल के टैंकर सहित 13 भारतीय जहाज स्वदेश आ चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। एआई से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, गर्मी का मौसम आते ही शरीर जल्दी थकने लगता है, पसीना अधिक आता है और पानी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होने लगती हैं। ऐसे समय में पेट भरना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ऐसा भोजन जरूरी होता है जो शरीर को सही पोषण और ऊर्जा दे। इसी को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है फॉर्मुलेटेड डाइट, यानी ऐसा संतुलित आहार जिसे शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये एक ऐसी डाइट है जिसमें शरीर की उम्र, स्वास्थ्य और जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का सही संयोजन होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पर्याप्त तरल पदार्थ शामिल किए जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। इस डाइट में सामान्यतः दालें, दूध और दुग्ध उत्पाद, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, सलाद, दही, छाछ, नारियल पानी और पर्याप्त पानी शामिल होते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें कम तेल मसाले और आसानी से पचने वाला भोजन भी शामिल किया जाता है। गर्मियों के मौसम में फॉर्मुलेटेड डाइट जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में शरीर में ऊर्जा और पानी की कमी जल्दी होने लगती है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, थकान कम करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो श्रोताओं, आप भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। फॉर्मुलेटेड डाइट डाइटिशियन की सलाह से लें एवं इसका लाभ उठाएं। पर अभी सुने ये मधुर गीत।

0: श्रोताओं, जब चिकित्सा पद्धति की बात आती है तो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सुनवा रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और स्वास्थ्य विषय पर एक भेंट वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर ऋषि मिश्रा और भेंट करता है मनीष गजबीय।
1: श्रोताओं नमस्कार। आयुर्वेद से हम सभी परिचित है, यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर ऋषि मिश्रा। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: ऋषि जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और यह किस तरह से काम करती है।
2: यह चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि पुराने समय में भी बहुत लाभदायक थी और आज के समय में भी बहुत लाभदायक है
1: जी।
2: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वह है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस से विकार प्रश्नम। इसका मतलब है हम स्वस्थ व्यक्तियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: और साथ ही अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके रोग का निर्मूलन कैसे पकड़ सकते हैं
1: जी जी जी।
2: इसमें आपको क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे
1: जी।
2: हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को रोगों से और क्योर कैसे कर सकते हैं
1: जी। ऋषि जी, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है तो लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आयुर्वेद के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है इन बीमारियों को।
2: जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और अभी के समय में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों रोगी हो रहे हैं
1: जी।
2: और यह लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज ज्यादा अपने को देखने में आ रही है, जैसे मोटापा हो गया, बीपी हो गया, ये बीमारियां ज्यादा देखने में आ रही है और ये बहुत कॉमन होती जा रही है
1: जी।
2: इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है और हमको इसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या और दिनचर्या के पालन करने से हमारे जो रोग हैं ये हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी तीव्रता को भी कम किया जा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बात करी जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, तो ये जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या इसका इलाज भी संभव है आयुर्वेद में?
2: हाँ जी बिल्कुल, इसका वर्णन है आयुर्वेद में। डायबिटीज को हम मधुमेह कहते हैं जो कि प्रमेह के अंतर्गत बताया गया है और उसके अंदर उसके कारणों को भी बताया है और उसका निदान भी बताया है, इलाज भी बताया है
1: जी। डॉक्टर साहब, आजकल लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है तो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो उसमें आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है मानसिक स्वास्थ्य का भी, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का भी इस चिकित्सा पद्धति में इलाज संभव है?
2: हाँ जी बिल्कुल है, और हमारे प्रकृति में ऐसी कई वनौषधियां हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जैसे आपको शंख पुष्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, जटामांसी हो गई, ऐसे कई मेद्य द्रव्य बताए गए हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हैं। साथ ही आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा भी है जिसमें शिरोधारा प्रक्रिया यह इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शिरोवस्ती होती है, शिरो अभ्यंग होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है
1: जी जी।
2: आयुर्वेद में योग का भी वर्णन है, योग में आपको ब्राह्मी प्राणायाम होता है, इससे भी लाभ मिल सकता है। तो मतलब बहुत तरीके से हम मानसिक चिकित्सा इसमें हम दे सकते हैं
1: बिल्कुल
2: मानसिक रोगों में।
1: डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, तो आजकल पंचकर्म क्रिया का भी नाम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, तो क्या यह पंचकर्म जो प्रक्रिया है उससे किसी भी तरह के पेशेंट को किस तरह का लाभ मिलता है इस पद्धति के द्वारा?
2: पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है, हम आयुर्वेद

0: आयुर्वेद में ये देखते हैं कि रोगी के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, जिसमें वात पित्त कफ हमारे मुख्यतः दोष माने गए हैं और ये अपने सही प्रमाण से ऊपर रहते हैं तो वो दोष के लक्षण दिखाते हैं। तो इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो पंचकर्म है। इसमें कुछ हद तक हम शमन चिकित्सा के रूप में या रोगों को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और ये आत्यायिक चिकित्सा के रूप में भी काम आती है, मतलब एक्यूट पेन रिलीफ करने में भी मदद करती है। पंचकर्म को हम मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन स्वेदन, जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, उसका भी बहुत सारा अलग विस्तृत वर्णन है जिसमें अलग अलग रोग के हिसाब से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। मुख्यतः प्रधान कर्म में आते हैं जो पांच मुख्य कर्म है, उसमें वमन आता है, मेडिकेटेड वोमिटिंग। दूसरे नंबर पर आता है विरेचन, मेडिकेटेड लूज मोशन। फिर तीसरे नंबर पर आती है बस्ती चिकित्सा, जिसमें हम ऑयल और काढ़े को एनस में इंट्रोड्यूस करते हैं। चौथे नंबर पर आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण के अंदर हम ब्लड लेटिंग करते हैं, कहीं किसी पार्ट में अगर हमारे को कहीं ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है या वहां घाव बन रहा है तो उस जगह से हम दूषित रक्त को निकालते हैं। पांचवें नंबर पर आता है नस्य प्रक्रिया। नस्य प्रक्रिया यानी नाक में मेडिकेटेड ऑयल को, कुछ चून को या काढ़े को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक चिकित्सक के देखरेख में और वो प्रक्रिया हमको बहुत अच्छा लाभ देती है। ऐसे ये पांच मुख्य कर्म पंचकर्म में आते हैं। इसके बाद पश्चात कर्म होता है। जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद में जो पश्चात कर्म में धूमपान वगैरह होता है, संसर्जन कर्म होता है, उसको फॉलो किया जाता है।
1: जी जी, तो ये आपने पंचकर्म की बात करी, तो पंचकर्म करने के लिए क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य है या वह घर में रहकर भी इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकते हैं?
0: नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको चिकित्सक की देखरेख में ही कराना है, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी आसान नहीं है। इसमें चिकित्सक उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि उसके वाइटल्स क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रोसीजर के लायक है या नहीं है, इस प्रकार से वो डिजाइन करता है एक चिकित्सक। तो इसलिए इसको हॉस्पिटल में कराना या एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में कराना ज्यादा उचित होगा।
1: जी जी जी, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद्धति में खानपान की भूमिका क्या रहती है?
0: हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आहार हमारी सबसे पहली चिकित्सा है। आहार से ही हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमको एसिडिटी हो रही है, हमको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हम उसमें अगर तीखे पदार्थ लेते हैं तो वो उसको और एग्रीवेट करता है। उसी के बदले में अगर हमने उसमें थोड़ा सा मधुर द्रव्य दिया तो उसको सबसाइड कर देगा। तो आहार का तो बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में और आहार का महत्व भी बहुत कुछ है इसमें।
1: जी जी जी, हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो बदलती हुई जीवन शैली है उसमें आहार का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि आहार के माध्यम से जैसा भी हमें डॉक्टर साहब ने भी बोला, काफी हद तक हम चीजों को या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो यह है कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं?
0: ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के दौर में देखने में आता है हमारी प्रैक्टिस लाइन में कि रोगी पहले से ही कुछ मेडिकेशन करता हुआ आ रहा है और वो डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर। अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा स्विच हो जाऊं या मैं उसमें कुछ और अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं, तो बिल्कुल आयुर्वेद की उसमें मदद लेनी चाहिए और पैरेलल में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को बता दीजिए और उनके संपर्क में रहिए और फिर आप टैपरिंग डोज में धीरे धीरे अपनी मॉडर्न मेडिसिन्स को आप रिड्यूस करते जा सकते हैं और आयुर्वेद को आप लेते जा

0: देखिए, किसी भी चीज की अगर अति मात्रा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे हम डे टू डे लाइफ में शक्कर ज्यादा खा रहे हो तो उसका भी हमको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होने लगेगा। ऐसे ही आयुर्वेद के चिकित्सा है, इसको आपको उचित मात्रा में, उचित प्रमाण में अगर लेंगे तो लाभदायक है। अनुचित प्रमाण में ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं तो उससे फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा। जो कि आपको अगर चिकित्सक परामर्श देते हैं तो वो उस समय वर्णित करते हैं कि इसको इस तरीके से इस मात्रा में लेना है तो वो लाभदायक बनेगी।
1: जी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आयुर्वेद में ऑपरेशन के माध्यम से भी इलाज संभव है किसी बीमारी का?
0: बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आयुर्वेद सिर्फ औषधि सेवन करने की विधा नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशंस भी बताए गए हैं। इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य सुश्रुत हैं, जिनको मॉडर्न के डॉक्टर भी अपना फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और हमारे यहाँ आज भी कई बीमारियों के ऊपर सर्जरी होती है, जैसे मुख्यतः पाइल्स के अंदर, भगंदर यानी फिस्टुला, इसके अंदर की जाती है सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेडिसिन से पहले क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा देर हो गई है और बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया है डिजीज, तो फिर सर्जरी भी की जाती है जिसमें चार सूत्र पद्धति से इलाज किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को अक्सर देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, स्वयं से ही दवाई ये सोच के ले लेते कि शायद आयुर्वेद में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं बताना चाहूंगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन की चिकित्सा विधा नहीं है। ये दिखती आसान है पर इसके अंदर बहुत कुछ अध्ययन करने की जरूरत होती है। हम एक औषधि के अंदर रस, गुण, वीर, विपाक सब कुछ देख रहे होते हैं और एक आयुर्वेद चिकित्सक अपने 5.5 साल की पढ़ाई करके एक बैचलर डिग्री प्राप्त करता है। आज के समय में इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग गया है, इसमें MD होने लग गई है, तो स्पेशलाइजेशन होने से और क्वालिटी इनहेंस हुई है। तो सेल्फ मेडिकेशन लेने से कई गलतियां होने के चांसेस बनते हैं और जो कि रोगी को भोगने पड़ते हैं, और फिर वो समय की भी मर्यादा है। अगर कोई रोगी अपने जितनी जल्दी डॉक्टर के पास में पहुंच जाता है तो रोग को ठीक करने में हमें समय कम लगता है और जितना समय ज्यादा गवा देता है उतने ही कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो फिर इलाज करने में देरी होने लगती है। तो बेहतर है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करके टाइम वेस्ट ना करें और हम उसकी जगह पर चिकित्सक से परामर्श ले लें तो जल्दी समय मिलेगा इलाज करने का और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जल्दी ठीक होने की बारी आ जाएगी। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज के दौर में इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं रील्स वगैरह जिसमें लोग अपना उधर से देख के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिस में देखने में आ रहा है। तो ये वही श्रोता है जो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जा रहे हैं या वो किसी रील्स के कारण देख रहे हैं या ले रहे हैं दवाइयों को, यह अनुचित है। इसमें आप उस विंडो पीरियड, वो जो पीरियड है, जो शुरुआती पीरियड है जिसमें हम जल्दी ठीक कर सकते थे, वो गवा देते हैं और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर के लिए भी आप चुनौती बढ़ा रहे हैं और अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मुझे कहना है कि ये सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल ना करें, हमारे आसपास चिकित्सक अवेलेबल हैं और उनको दिखा के आप चिकित्सा परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी बहुत अच्छी बात की आपने, और हम अपने तमाम श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जो दौर है उसमें बिल्कुल भी आप किसी तरह की रील को या किसी तरह की साइट पे जाकर स्वयं से उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर है, डॉक्टर से परामर्श लें और तभी आप अपना इलाज करें। कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वह किस तरह से अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से?
0: आयुर्वेद एक आपको बहुत अच्छा साइंस मिला है और उस साइंस में क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों चीजें मेंशन है। तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकते हैं अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। मुख्यतः आहार पर अपना ध्यान रखना चाहिए, आज की तारीख में जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है और वही हमको नुकसान दे रही है। दूसरा, हमारी निद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी प्रॉपर लेना है। ये नहीं कि अपने कार्य के कारण आप निद्रा को प्रॉपरली ना लें तो फिर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और आपको कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो आहार और निद्रा पे विशेष रूप से ध्यान रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कार्य क्षमता अच्छी रहेगी।
1: डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह हमारे श्रोताओं के काम आएगी।

0: कि हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष गजबिये की बातचीत, और अब सुनिए ये प्यारा संगीत।

श्रोताओं, आज का युग तकनीक का युग है। तकनीक ने जहां हर क्षेत्र में अपना स्थान लिया है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। आज मोबाइल एप्स, स्मार्ट वॉच और ऑनलाइन परामर्श की मदद से लोग घर बैठे अपनी सेहत पर नजर रख पा रहे हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद और कदमों की गिनती जैसी जानकारियां अब तुरंत मिल जाती हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से अब दूर दराज के मरीज भी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले पा रहे हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कई बीमारियों की पहचान जल्दी करने में मदद कर रहा है, लेकिन तकनीक का सही उपयोग भी आवश्यक है। केवल इंटरनेट की जानकारी पर भरोसा करने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना भी आवश्यक है। स्क्रीन टाइम कम रखना व नियमित व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। अब तो तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे उपकरण भी आ गए हैं जो नींद की गुणवत्ता को ट्रैक करने, उसका विश्लेषण करने और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह तकनीक आपको गहरी नींद, खर्राटे, दिल की धड़कन और सांस लेने के पैटर्न को समझने में सहायता करती है। तकनीक और स्वास्थ्य का संतुलित मेल हमारे जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और सरल बना सकता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ विशेष सेहत सूत्र, जिससे बढ़ते तापमान में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का सेवन करें। ज्यादा तले भुने खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। हल्का व सुपाच्य भोजन लें। दोपहर की तेज धूप में घर से बाहर निकलने से बचें और निकले तो सिर व मुंह ढककर और आंखों पर धूप का चश्मा लगाकर निकले। लू से बचने के लिए केरी के पने का सेवन करें व प्याज की एक गांठ साथ में लेकर ही बाहर निकले। सूती और हल्के रंगों के कपड़े पहने, जिससे शरीर को ठंडक मिले। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी उन्हें अधिक प्रभावित करती है। थोड़ी सी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाकर हम गर्मी के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद है इन सभी बातों को अपनाकर आप अपने को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेंगे। श्रोताओं, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक अवश्य दें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 1:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं लोक भजन।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल के प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत का। कलाकार हैं प्रकाश पाठक, आप सुनिएगा इनकी आवाज में चंद गजलें। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। पेश है पहली गजल, शायर है दुष्यंत कुमार त्यागी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगली गजल। कलाम है गोपाल दास नीरज का और कलाकार प्रकाश पाठक।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रकाश पाठक की गायी चांद कसले। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़ी ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
5: दिन के 2 बजे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गीत, उदित नारायण, वसुंधरा दास और अलका याग्निक की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत ए आर रहमान का।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की गली से। SH बिहारी के बोल हैं और संगीत ओपी नैयर का, खूबसूरत आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संघ लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने रामबन जिले में ग्राम रक्षा समूहों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सुरक्षा बढ़ाना, तैयारियों में सुधार करना और तीर्थ यात्रा मार्ग पर रहने वाले निवासियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। झाबुआ जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से धूप में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की भी अपील की है। प्रदेश में पेपरलेस कार्य संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागरिकों को एमपीई सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सरकार के 56 विभागों की 1700 सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राज्य में साइबर तहसीलों की स्थापना हो चुकी है। इस नवाचार को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिल चुका है। भोपाल में देश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत की गई है। प्रदेश में E0 FIR का भी शुभारम्भ किया गया है। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पूर्णतः पेपरलेस हो चुकी है, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रदेश में सुशासन के साथ ग्रीन गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश लीग 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुष वर्ग के टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 3 जून को होलकर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ग्वालियर चीताज और उज्जैन फॉल्कल्स के बीच

0: खेला जाएगा। महिला वर्ग की प्रतियोगिता 4 जून से शुरू होगी, जहां पहले मुकाबले में चंबल घड़ियाल्स का सामना ग्वालियर शेरनीज से होगा। एमपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 26 जून को शाम 7:30 बजे इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यावरणविद प्रखर चिंतक पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के विकासखंड केसला में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में कुंडम विकासखंड जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा करने वाला पहला जनगणना विकासखंड बन गया है। आगरमालवा में किसानों को ई टोकन प्रणाली के माध्यम से सरल सुगम पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। सतना जिले में पुरुषोत्तम मास के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
4: नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्ततयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
5: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैले। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
6: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
7: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम

तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य

आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लावारिस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रकाश मेहरा के बोल हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी के। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला जंदे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड भानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और इसी के साथ एक और पत्र है हमारे हाथ में, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यार झुकता नहीं से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, बोल है SH बिहारी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कबर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य आदिति, शिवानी शिमाली, और एक और पत्र है हमारे हाथ में सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सलिया शुएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

गौरी नगर इंदौर से आनंदम कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले और ज़िला जालौन से सत्यम सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक। और एक और पत्र हमें मिला है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू का। हमारे ये सभी श्रोता सुना चाहते हैं तेजा फिल्म का गीत नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की आवाज़ है, देव कोहली का गीत है और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, और छत्तीसगढ़ दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रंगने से दिलेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।

नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरान नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन के बेड़े को रवाना किया। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौती और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और मध्य प्रदेश लीग एमपीएल 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के 10 और महिला वर्ग के 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 3 बजे हैं। आइए एक नजर डालते हैं हमारे आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम में युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और 8:15 पर। शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन होंगे 6:45 पर। ग्राम सभा ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में, 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग होगा जय जय पंती। ये थे हमारे केंद्र से आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 3:02 होने वाले हैं और मीडियम वेव पर प्रसारण हमारा समाप्त होता है। शाम 5 बजे हम कार्यक्रमों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारा ये प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। दोस्तों, दुनिया में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ जागरूकता, समझ और संवेदनशीलता से जीती जाती हैं। ऐसी ही एक लड़ाई है HIV और एड्स के खिलाफ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि HIV और एड्स एक ही चीज नहीं है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर करता है, और जब यह संक्रमण बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह स्थिति एड्स यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाती है। एड्स कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि HIV संक्रमण का अंतिम और गंभीर चरण होता है। इस बीमारी को पहली बार दुनिया ने 1980 के दशक की शुरुआत में गंभीरता से पहचाना। शुरुआती समय में लोगों के पास जानकारी बहुत कम थी और डर बहुत ज्यादा। कई लोग ये मानते थे कि HIV छूने से फैलता है या साथ बैठने, खाना खाने, हाथ मिलाने से हो सकता है, लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे इन भ्रांतियों को दूर किया। HIV मुख्य रूप से देखा जाए तो असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सिरिंज या नीडल साझा करने से और संक्रमित माँ से बच्चे तक पहुंच सकता है, लेकिन यह हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने, छींकने, खांसने या सामान्य संपर्क से नहीं फैलता, और यही जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वैक्सीन की, तो वैज्ञानिक लगातार क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी प्रयास और जागरूकता को समर्पित है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। यह दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि विज्ञान, उम्मीद और इंसानियत के उस निरंतर प्रयास का प्रतीक है जो एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भी समाज में HIV को लेकर कई भ्रांतियां मौजूद हैं, और कई बार बीमारी से ज्यादा लोग समाज के व्यवहार से डरते हैं, लेकिन सच यही है कि जागरूकता ही सुरक्षा है।

सही जानकारी, समय पर जांच और संवेदनशील व्यवहार यही इस लड़ाई के सबसे बड़े हथियार हैं। हमें यह समझना होगा कि बीमारियों से लड़ना जरूरी है, बीमार लोगों से नहीं। और शायद इंसानियत की सबसे सुंदर पहचान भी यही है कि हम किसी को उसके संघर्ष में कभी अकेला महसूस ना होने दें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं केके की आवाज में फिल्म राज रिबूट से ये प्यारा सा गीत, जिसके बोल लिखे हैं कौशर मुनीर ने और संगीत है सिद्धार्थ हल्दीपुर का।

दोस्तों, कहा जाता है कि यदि किसी सभ्यता को सचमुच समझना हो तो उसकी इमारतों से अधिक उसके संग्रहालयों को देखना चाहिए, क्योंकि संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संकलन नहीं होते, वे समय के संरक्षक होते हैं। इतिहास की निशब्द स्मृतियां जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अतीत को सहेज कर रखती हैं। हर वर्ष 18 मई यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स अर्थात आईकॉम द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि संग्रहालय केवल दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा और सभ्यता के जीवंत केंद्र हैं। जब हम किसी संग्रहालय में प्रवेश करते हैं तो हम केवल वस्तुएं नहीं देखते, हम समय के विभिन्न कालखंडों से संवाद करते हैं। कहीं प्राचीन शिल्प कथा, कहीं दुर्लभ पांडुलिपियां, कहीं राजवंशों की विरासत तो कहीं स्वतंत्रता संग्राम की मौन गाथाएं। हर वस्तु अपने भीतर एक युग समेटे होती है। मध्य प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। भोपाल का जनजाति संग्रहालय हो या इंदौर का केंद्रीय संग्रहालय, ये स्थान केवल इतिहास को प्रदर्शित नहीं करते, उसे जीवंत कर देते हैं। आज जब दुनिया तीव्र गति से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, ऐसे समय में संग्रहालय हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखने का कार्य बखूबी करते हैं, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को सहेजना जानता है वही अपने भविष्य को भी गरिमा के साथ गढ़ पाता है।

मित्रों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या हम इतनी तेजी से कन्वीनियंस के आदि हो चुके हैं कि अब हमें उसके परिणाम दिखाई ही नहीं दे रहे? एक कॉफी कप, एक प्लास्टिक बॉटल, एक कैरी बैग, कुछ मिनटों की सुविधा और फिर वही प्लास्टिक वर्षों तक धरती पर बोझ बनकर पड़ा रह जाता है। अजीब बात है ना, जिस चीज को हम कैजुअली इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वही चीज नदियों का रास्ता रोकती है, समुद्रों को प्रदूषित करती है, जानवरों की जान लेती है और अब तो माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में हमारे शरीर तक पहुंच चुकी है। यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहानी का एक अच्छा हिस्सा भी है, पर वो मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम।

कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम के आसपास एक अच्छी बात है, और वो है इसका सोल्यूशन, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप कपड़े का बैग यूज़ करें, स्टील या कोई और मटेरियल की रीयूजेबल बॉटल, प्लास्टिक स्ट्रॉस को ना कहें, और छोटी छोटी ऐसी ही कॉन्शियस चॉइसेस लेते रहें। बस इतनी सी बातें धरती को बहुत बड़ी राहत दे सकती हैं, क्योंकि प्लास्टिक फ्री लिविंग कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये आने वाले समय के लिए हमारी जिम्मेदारी है। और सच

कहें तो प्रकृति हमसे परफेक्शन नहीं चाहती, बस थोड़ी सी समझदारी चाहती है। तो आइए सुविधा से थोड़ा ऊपर उठकर संवेदनशीलता को अपनी आदत बनाएं। प्लास्टिक फ्री लिविंग को केवल एक कैंपेन नहीं, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारी तरक्की नहीं, हमारी समझदारी याद रखेंगी।

प्रिय श्रोताओं, अगर आप या आपके परिवार में कोई युवा नौकरी की तलाश में है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 के अंतर्गत 1200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा फॉरेस्ट गार्ड तथा जेल प्रहरी भर्ती के लिए 1679 पदों पर अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है। इसी के साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 का आयोजन भी आगामी महीनों में प्रस्तावित है। देश भर के स्नातक अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं। विस्तृत जानकारी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब इसी के साथ आपका दोस्त शाश्वत विष्णु रावत लेता है आपकी आज्ञा। सुनते रहिए युववाणी और जुड़े रहिए ज्ञान, प्रेरणा और संगीत से। नमस्कार।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की DTS सेवा, DD डायरेक्ट।
4: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

कुछ ना कहो। दीजिए सुनिए इस फिल्म से शान और साधना सरगम को। जावेद अख्तर का गीत है और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

ये गीत आप सुन रहे हैं, इसे हमने लिया है दिल तो पागल है फिल्म से। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजें, आनंद बख्शी का गीत और उत्तम सिंह का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब सुनिए कुछ ना कहो फिल्म का नगमा, शान और साधना सरगम की आवाजें, जावेद अख्तर का गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में कहा कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के लिए आज भोपाल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक अभियान संचालित किया जा रहा है। वरिष्ठ IAS अधिकारी सौरभ विजय ने आज भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में 2 दिन के ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की बैठक की मेजबानी करेगा। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा और MPL 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10, महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गॉरस्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
3: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सदाबहार गीत का। सदाबहार गीत में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप रात 8:15 बजे भी सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है मध्य प्रदेश में आम उत्पादन की बढ़ती संभावनाएं और मैंगो फेस्टिवल 2028। आलेख श्री अनिल वशिष्ठ, आप जनसंपर्क विभाग में सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं।

भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में भी विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान रखता है। फलों फूलों और सब्जियों के उत्पादन के माध्यम से देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ने उद्यानिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाया है। विशेष रूप से फल उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। भारत वर्ष में कुल लगभग 1176 लाख मेट्रिक टन फलों का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 102 लाख मेट्रिक टन उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ये उपलब्धि प्रदेश के किसानों की मेहनत, अनुकूल जलवायु, राज्य सरकार की योजनाओं का प्रतिफल है। फल उत्पादन की दृष्टि से यदि किसी एक फल की लोकप्रियता और आर्थिक महत्व की चर्चा की जाए तो आम का नाम सबसे पहले आता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। पिछले चार वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो प्रदेश में आम उत्पादन में लगभग 72,000 मेट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसलों, विशेषकर आम उत्पादन की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां आम उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध हो रही हैं।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अलग अलग किस्मों के आम का उत्पादन किसानों को बेहतर आय उपलब्ध करा रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार द्वारा आम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में 13 जून 2026 को प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैंगो फेस्टिवल 2026 अर्थात आम महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ये आयोजन केवल एक प्रदर्शनी या उत्सव नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के आम उत्पादक किसानों, उद्यानिकी विशेषज्ञों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संवाद और विपणन का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। महोत्सव के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न किस्मों के आमों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष प्रदेश के प्रमुख जिलों अलीराजपुर, रीवा, शहडोल, सीधी, सतना, नर्मदापुरम, अनूपपुर और नरसिंहपुर में लगभग 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में आम उत्पादन विस्तार की कार्य योजना तैयार की गई है। ये योजना किसानों को उद्यानिकी आधारित खेती की ओर प्रेरित करेगी और प्रदेश में आम उत्पादन का दायरा और अधिक विस्तृत होगा। प्रदेश के लिए गौरव का विषय ये भी है कि सुंदरजा आम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है। रीवा जिले के प्रसिद्ध सुंदरजा आम को GI टैग मिलने से न केवल इसकी विशिष्टता को वैश्विक पहचान मिली है, बल्कि इससे स्थानीय किसानों को आर्थिक लाभ और बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावनाएं भी बढ़ी है। सुंदरजा आम अपने मिठास, सुगंध और विशिष्ट स्वाद के कारण देश विदेश में लोकप्रिय हो रहा है। भारत सरकार की प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर नकदी फसलों, फल फूल और सब्जी उत्पादन की ओर प्रोत्साहित करना है। उद्यानिकी फसलें किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनकी बाजार में मांग निरंतर बनी हुई है। उत्पादन से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है। आम जैसी फसलें किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय भी इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला कदम है। कृषि उद्यानिकी क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आज आवश्यकता है इस बात की कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आम उत्पादन को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। यदि किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यात सुविधाओं और बेहतर बाजार व्यवस्था से जोड़ा जाए तो मध्य प्रदेश देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आम उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। मैंगो फेस्टिवल 2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। यह आयोजन न केवल प्रदेश की उद्यानिकी क्षमता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि किसानों की आय वृद्धि, कृषि विविधीकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम आज कल में इतना ही। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है नर्मदापुरम जिले से, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी।
1: नर्मदापुरम जिले में अप्रैल माह से ही तेज गर्मी पड़ रही है। 26 अप्रैल को सीजन का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। हिल स्टेशन पचमढ़ी में बी फॉल और अप्सरा फॉल जैसे झरनों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार जून के दूसरे सप्ताह तक मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, शरीर को पूरी तरह ढककर रखने और पर्याप्त मात्रा में पानी तथा तरल पदार्थ लेते रहने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है प्रदेश के इंदौर जिले से, जहां दो चरणों में होने वाली जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से प्रारंभ किया गया है। 31 मई 2026 तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र दुबे।
2: इंदौर जिले में जनगणना 2027 के लिए प्रगणक अपने निर्धारित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ब्लॉक की पहचान और उसके बाद मकानों की गिनती कर रहे हैं। इंदौर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी शिवम वर्मा ने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल एवं पारदर्शी है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि एक एक मकान और उससे जुड़ी बुनियादी जानकारी का सटीक डेटा तैयार किया जाए, जिससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि 15 से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्वयं गणना का विकल्प दिया गया था। इसमें 13,778 मकानों की गणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जनगणना 2027 की कार्य योजना और क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए जिले के मुख्य प्रशिक्षक जनगणना आर के पांडे ने आकाशवाणी को बताया,
3: भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण का कार्य मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ है। इंदौर जिले में कुल 41 चार्ज ऑफिसर बनाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 19 और नगर निगम क्षेत्र में 22 हैं, और कुल जो प्रगणक ब्लॉक बनाए गए हैं, यानी जो मकान सूचीकरण ब्लॉक जो बनाए गए हैं, ग्रामीण में 2068 और नगर निगम क्षेत्र में 3,890, इस तरह से 5,958 ये प्रगणक ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में एक एक प्रगणक प्रत्येक परिवार में जाकर के डिजिटल फॉर्म में उनसे 34 जानकारियां ले रहे हैं और उसको ऑनलाइन करते जा रहे हैं, और इनके सुपरविजन के लिए प्रत्येक 6 प्रगणक के ऊपर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। अभी तक 2,141 ब्लॉक पूरे जिले में हैं, जिनमें 100% काम हो गया है। ये काम 30 मई तक होना है।
2: गौरतलब है कि मकान सूचीकरण की प्रक्रिया से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सटीक एवं वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा जोखिम, आवास की स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता का भी विश्लेषण होगा, जिससे जिले की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से बनाया जा सकेगा। जनगणना के दूसरे चरण में 1 से 28 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से जनगणना की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनीन्द्र कुमार दुबे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं खरगोन जिले का, जहां पर भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: खरगोन जिले में भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार खरगोन शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अलग अलग खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के करीब 350 से अधिक नमूने संग्रहित किए गए। प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ गुणवत्ता की जांच को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री HL आवासी।
5: गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मार्च से खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों जैसे बेवरेजेस पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, दूध उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे आइसक्रीम, कुल्फी, मावा, एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच संपूर्ण जिले में विशेष अभियान के तहत उक्त खाद्य पदार्थों के कुल 350 नमूने लिए जाकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए हैं। जो खाद्य पदार्थ अवमानक पाए जाने पर या अन्य धाराओं के उल्लंघन करने पर माननीय सक्षम न्यायालय में 15 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिकायत पर भी विभाग के द्वारा तत्काल जांच कर नमूने लिए।
4: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं मंदसौर जिले पर, जहां पर ग्राम पंचायत से लेकर नगरी वार्डों में आयोजित प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच निःशुल्क की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मंदसौर संवाददाता दीपक शर्मा।
6: मंदसौर जिले में ग्राम पंचायत से लेकर नगरी वार्डों में प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिविर में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। इसके साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आम जन को क्षय रोग से होने वाले लक्षण और इसके बचाव की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पहुंच रहे लोगों को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाने के साथ ही टीबी जैसी बीमारी के लक्षणों और निक्षय योजना के तहत मिलने वाली 1000 की मासिक आर्थिक सहायता की जानकारी भी दी जा रही है। आयुष्मान आरोग्य शिविर में टीबी स्क्रीनिंग, एक्सरे, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी करीब 50 से अधिक बीमारियों की जांच, वहीं निःशुल्क दवाइयां वितरित कर बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली खबर है झाबुआ जिले से, जहां की रामा तहसील में आयोजित ग्राम चौपाल में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जल संरक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे झाबुआ संवाददाता हरीश कुमार।
7: वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी CFR के तहत ग्राम साढ़ को सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के बाद ग्राम चौपाल आयोजित की गई। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने ग्राम साढ़ और सदावा के बीच सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों से वन संरक्षण, पारंपरिक सीमाओं और स्थानीय आवश्यकता पर चर्चा की। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी और वन अधिकार से जुड़ी समस्याओं एवं सुझाव रखे। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश कुमार भरसट ने आकाशवाणी को बताया कि
8: हमारा झाबुआ जिला का पूरा प्रशासन है, जिसमें प्रशासन, पुलिस एंड फॉरेस्ट सभी अधिकारी, इसके अलावा हमारे जिले के सभी जो अधिकारी जिला स्तरीय है, तहसील स्तरीय है और ग्राम स्तरीय, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। गांव चौपाल लगाने का यही उद्देश्य था कि प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है, जो भी समस्या है वो हमने उनको बताने के लिए कहा और सभी लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से उनकी समस्या भी बताई और हमारे द्वारा जो भी अधिकारी है उन्होंने कुछ कुछ आने वाले समय में खाद से संबंधित हो या किसान की, क्योंकि ये किसान कल्याण वर्ष है, उसके तहत हमारे जो भी कृषि संबंधित उनको योजना के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी हमारी जो अपेक्षा है प्रशासन की कि लोगों को कैसे समरसता रहे और जो वन अधिकार, जो सामुदायिक वन अधिकार उनको पत्र प्राप्त हुआ है इस गांव को, उनको आगे कैसी कार्य योजना बनानी है और कैसे वो अपने अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन जो अधिकार है उसके तहत कैसे कार्य कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया। तो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक चौपाल रहा।
7: पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने जिले में अपराध, दहेज, दारू और डीजे के बारे में बताया कि
9: जिले के सारे अधिकारी, कलेक्टर साहब, मैं, DFO साहब और पूरे सभी विभागों के अधिकारी एक जाजम पे इस गांव में बैठे थे। पब्लिक से एक संवाद बनाने का प्रयास किया गया, कनेक्ट किया गया, उनकी चीजों को भी बहुत गंभीरता से सुना और एक हम लोगों के द्वारा भी एक मैसेज देने का प्रयास किया कि पुलिस शासन आपके लिए है। किंतु उस जिले में कोई बहुत वैसा क्राइम नहीं है, किंतु जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके चलते जो अपराध है उसके बारे में एक अवेयर करने का भी प्रयास था कि शराब हुआ, डीजे हुआ, दहेज हुआ, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना आगे हम लोगों को आना चाहिए, उन सब चीज़ों से ही हम अपराध और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ठीक से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे माहौल में इनसे बात की, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और आने वाले समय में हम लगातार ऐसा प्रयास करेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में रुख करते हैं जबलपुर जिले का, जहां पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी।
10: जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। गेहूं खरीदी, परिवहन, भंडारण और बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के साथ साथ कलेक्टर ने अधिकारियों
11: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
12: डीडी डायरेक्ट
11: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
12: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
11: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
12: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
11: आज ही करें कनेक्ट
12: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
13: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डी डी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
4: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
3: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा

0: है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:15 बजे। रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। 10 बजे सुनिएगा आपकी फरमाइश। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग जय जय बंती। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम और अब एक नजर डालते हैं कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। पहले सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कल सुबह 11 बजे से होगा, जिसमें 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे कल दोपहर 12 बजे और 2:30 बजे। 12:30 बजे संग्रहालय के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक पंचतंत्र की 6वीं कड़ी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकेगा कल दोपहर 2 बजे, शाम 5:35।

मिनट पर रात 8:15 और रात 10 बजे। कल शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। और कल रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम।

कल रात 9:30 उर्दू प्रोग्राम कहकशां में आप सुनेंगे गजलों पर आधारित केंद्रित कार्यक्रम आवशारे गजल। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन रागों का हमीर। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम, और अब सुनिए आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों

कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 बजे। सुगम संगीत में 9:15 बजे आप सुनेंगे पुष्पा पगधारी की गाई गजलें। कल सुबह 9:30 बजे शब्द सागर कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे परिचर्चा। विषय है कहानी लेखन में स्वरूप और संवेदना। प्रतिभागी हैं डॉक्टर गोविंद मिश्रा, शशांक और डॉक्टर उर्मिला शरीश। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे कल सुबह 10:00 बजे और 10:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे कुमार गंधर्व का ख्याल गायन, राग होगा अहीर भैरव। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। विषय है गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। साथ ही सुनिएगा बुंदेली समाचार और लोकगीत। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारा कार्यक्रम विवरण

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान आज से शुरू। और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मौसम विभाग ने तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने ओस्लो में सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। ये स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और हरित बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और तेजी से फैलें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। आज भोपाल में आयोजित जूनियर रेड क्रॉस और युवक रेड क्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सक्षम पीढ़ी के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों में रेड क्रॉस की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान बच्चों में ज्ञान और संस्कार को प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थानों को विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, उन्हें समसामयिक चुनौतियों और जीवन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए जुझारू बनाएं, वहीं सफलताओं के दबाव और तनाव प्रबंधन से निपटने का हुनर सिखाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक MOU बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे चिकित्सक तैयार करने हैं जो मानव सेवा और मरीज की सेवा के लिए तत्पर हो। इस MOU का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को सेवा प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व का मॉडल बनाना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि देश की जनता उनके आह्वान का गंभीरता से पालन कर रही है।
1: वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से मित व्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उनके आह्वान का देश की जनता बड़ी गंभीरता से पालन कर रही है। समाज के हर एक वर्ग ने गंभीरता से लिया है
3: और उसके अनुरूप मित व्ययता अपनाने का, डीजल पेट्रोल की खपत घटाने के और बाकी उपायों को भी समाज का लगभग हर वर्ग कर रहा है।
0: प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम मंडल, बोर्ड प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए आज विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। जनजाति

वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान संचालित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को सफलतापूर्वक शिविर लगाने और लक्षित समूह को लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक ली, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में विगत बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के HR मैनुअल पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी लगातार बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। गुना में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आमजन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बैतूल जिले में 20 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का संभागायुक्त ने आज निरीक्षण किया। झाबुआ में कल विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष ने नगर के वार्ड क्रमांक 7 में 20 लाख रूपये की लागत से बनने वाली CC रोड का आज भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान के तहत जिले भर में नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले की बुधनी तहसील में भारत सरकार जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने यहां चल रही जनगणना तैयारियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: हाँ, फीस की टेंशन।
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
5: वो कहाँ है?
6: मिठाई।
7: आरबीआई कहता है
3: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम में बैठे और सुनन बारे अपे सभी भैया बहन का जय शिल्पा बहन की राम राम। और सुनाओ भैया, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है भैया कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कैसे भैया, अब इस समय पर देख रहे हैं कि गर्मी जो है बहुत विकराल रूप में पड़ रही है। तेज़ धूप, सुबह से ही तेज़ धूप होने लगा है। तो भैया देखो, गर्मी तो पड़ ही रही है, लेकिन ऐसे में अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और घर के जौन बुज़ुर्ग हैं, घर के छोटे बच्चाएँ, कैसे भैया देखो आजकल बच्चन की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो बेने तो अपने घूमने को चाहिए, शोर मचाने हैं, इतने उतने जाने, लेकिन गर्मी भी है तो उनको स्वस्थ रखें, उन्हें उनको गर्मी से, धूप से उनको बचाओ रखना भी बहुत ज़रूरी है। भैया गर्मी के समय में अपने सुबह के समय कोशिश यही करें कि जौन भी घर के ज़रूरी काम हो वह जल्दी से जल्दी सुबह निपटा लें। कैसे भैया, गर्मी तो सुबह से ही पड़ने लगाते, और ऐसी वैसी गर्मी नहीं पड़ते, बहुत तेज़ गर्मी पड़ते हैं। तो भैया देखो, मुंह जब भी निकलें तो अच्छे से अपने मुंह को कवर करके जाएं, यानी कि पूरी तरीके से मुंह ढक लें, आँखों पे धूप को चश्मा लगाएं, और खाली पेट बिल्कुल भी नहीं निकलें। थोड़ा बहुत कचु कलो आद करके ही घर से बाहर निकलें। संगे भैया, इस समय देखो अपे जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है, अपे शरीर में पानी की कमी भी होने लगते हैं, तो अपे ग्लूकोज ज़रूर लेते रहें और पानी खूब पिएं, और पानी साफ और स्वच्छ पानी ही पिएं। इसे क्या कि देखो, अपने शरीर में इस समय पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि पानी की कमी होते तो भैया शरीर में जब पानी डिहाइड्रेशन हो जाते हैं तो वह अपने लाने मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने दें। और जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने साथ एक प्याज जो है वह अपनी जेब में डाल के ज़रूर जाएं। प्याज जो है भैया अपने को लू से बचाओ थे, है ना, तो अगर अपने लू जो है लग जाते तो बहुत सारी समस्याएं हो जाते हैं। तो कोशिश यही करें, एक तो भैया धूप में नहीं निकलें, मुँह ढक के निकलें, आँखों पर चश्मा लगाएँ, और अपने साथ प्याज ज़रूर लेके जाएँ। तो इस तरीके से हमें गर्मी से अपने को बचा के रखने हैं। साथ ही अपने घर के जो पालतू पशु हैं उनको भी इस समय बहुत ध्यान रखें भैया। उन्हें ऐसी जगह पे बांधें, पेड़ की छाया हो, जहाँ पे शेड वालों स्थान हो वहाँ पर उन्हें रखें, और साफ़ और स्वच्छ पानी पिलाएं, ठंडो पानी पिलाएं, बासी खाना उनको नहीं दें। कैसे भैया, अगर वह बोल नहीं सकते हैं लेकिन उनमें भी जान है, तो उनको भी ध्यान रखने हैं, अपने को ही है। तो इसलिए भैया ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें ये गर्मी जो है वे आसानी से हम जो है इनको निकाल सकेंगे। और अब बात कर रहे थे भैया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। भैया ये भारत सरकार द्वारा 2013 में शुरू करी गई ये एक प्रमुख कार्यक्रम है जो ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य मिशनों को एकीकृत करते हैं। इसको मुख्य उद्देश्य देश भर में विशेष कमजोर वर्गों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक व माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर भी भैया ये केंद्रित है। ये योजना का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने हैं। भैया अपने देश में लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है, वहाँ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक मूलभूत आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को देखत भय भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करी। तो भैया हर योजना को उद्देश्य अपे यही है कि सभी को इस योजना को लाभ मिले और सभी स्वस्थ रहें और बीमारियों से बचे रहें। तो भैया ये तो भई बात अपे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। और अब बात कर लें कछु भैया फसल की। भैया इस समय देख रो बात करें अगर हम फसल संरक्षण की, तो फसल को कीटों, रोगों, खरपतवारों, खरगोश, चूहों जैसे जीवों से बचाकर पैदावार बढ़ाने की प्रक्रिया है।
ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने, लागत कम करने और आर्थिक नुकसान रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक कृषि में ये टिकाऊ खेती को एक प्रमुख हिस्सा है। भैया अपनी फसल को कीड़ों, फंगस, बैक्टीरिया और पिषाणुओं से बचाएं, साथ ही खरपतवार फसल के पोषण, पानी और धूप को सोख लेते हैं, इसलिए इसे समय पर हटा देना चाहिए। साथ ही फसल की कटाई के बाद उसको सुरक्षित भंडारण भी ज़रूरी है। अनाज को सुरक्षित भंडारण करें। भंडारण करने से पहले भैया अनाज को अच्छी तरीके से सुखा लें, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी उसको भंडारण करें। इसके लिए भैया धूप में अच्छी तरीके से अपनी फसल को

डाल दें, उसको एक दाना अपने मुंह में दांत के नीचे रख के देखें कि यदि उसमें से कट से आवाज़ आउते तो समझे कि अगर उसमें नमी नहीं है, यदि उसमें आवाज़ नहीं आउते तो अभी ईमान के चलें, अभी फसल में तनिक नमी है तो उसे अच्छी से सुखा लें। क्योंकि भैया देखो, अगर फसल में नमी रहेगी तो अपे फसल को जो दाना है उसमें घुन लगा सकते हैं, और जब घुन लगेंगे तो भैया अपे फसल खराब होगी। साथ ही भैया, जिन ड्रम टंकी के में अनाज को भंडारण करें वह भी साफ हो, उसे भी कीटनाशक घोल से अच्छी तरह धूप में सुखा कर तभी उसको में भंडारण करें। और संगे देखो भैया, इस समय पड़ रही है तेज गर्मी, तो अपे इस समय जो खेत अपे खाली इस समय पड़े हैं तो अपे खेतन की गहरी जुताई कर जरूर कर दें। और जैसे और तेज अगर अपे खेत में जुताई कर देंगे उनको, उसमें मिट्टी जो है उलट पलट हो जाएगी, उससे जो अपे कीटाणु हों अपे खेत में वे जो है वह तेज धूप में समाप्त हो जाएं। संगे भैया, इस समय अपे एक जो निश्चित समय रहते हैं, इस समय अपे मिट्टी को परीक्षण करा भी अपे भैया करा सकते हैं। इस समय अगर भैया खाली खेत हैं, अपे मिट्टी को परीक्षण अगर हम अब करा लेते हैं तो अपने को ये मालूम हो जाते हैं कि अपे खेत में कौन से जो उपजाऊ जो उपजाऊ तत्व है वे सही से हैं कि नहीं है। यदि नहीं है तो हम उनकी पूर्ति जो है अपे आराम से कर सकते हैं। तो इस समय ज़रूरी है कि भैया अपे खेत की मिट्टी को परीक्षण ज़रूर कराएं। और इसके लिए भैया देखो, अपे खेत की जो बीच में से किनारों से मिट्टी नहीं लें, अपे कई जगह से मिट्टी लेकर के उसे एक साफ उसको छान के, उसको कई बार उसको छाने, जब उसमें से थोड़ी सी मिट्टी रह जाए तो भैया उसको एक साफ थैली में भरकर उसमें अपनो ना खेत को नंबर, खसरा नंबर, अपनो नाम, फ़ोन नंबर की एक पर्ची जा डाल दें और कृषि विज्ञान केंद्र में ये मिट्टी को भेज दें। और इसके बाद जब अपनी ये इसकी में खेत की मिट्टी की अपनी रिपोर्ट आ जाए उसके अनुसार ही अपने खेत की आगे की तैयारी करें। तो भैया इस समय जो अपने खेत खाली पड़े हैं, अपने भैया इनके पास इस समय पर्याप्त समय है कि वह अपने खेत को मिट्टी के परीक्षण ज़रूर करा लें। और अब इस बात के संगे हम देते इस चर्चा को यहीं पर विराम। कैसे भैया, हम चाह रहे हैं कि आपके लाने कछु मनोरंजन कर दें, तो चलो राजू पटेल और साथियों को गाओ या सुन लेते हैं ये प्यारो सो लोके।

भैया अभी सुन रहे थे अभी ये प्यारो सो लोकगीत, और अब हम चाह रहे हैं कि भैया आपके लाने एक भेंट वार्ता सुनवा दें जिसको विषय है फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री जितेंद्र कुमार जाटव, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो चलो सुन लेते हैं ये पुनः प्रसारित ये।

0: प्रयास भी लगातार हो रहे हैं और कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास भी हो रहे हैं। तो कृषि के कार्य में हम बदलते हुए स्वरूप के अगर हम अलग अलग हिस्से करते हैं तो उसमें फल और सब्जियां भी आती हैं। फल और सब्जियों को अगर हम तुरंत यूज में ला लें तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए यानी कि उत्पादन ज्यादा हो जाए तो फिर उसे अगर बेचेंगे तो दाम कम मिलेंगे, यानी कि उसका हम कुछ दूसरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, दूसरा उपयोग कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक विषय है फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री जितेंद्र कुमार जाटव जी हैं, आप उद्यान विस्तार अधिकारी हैं शिवपुरी में। जाटव साहब, सभी सुनने वालों के बीच में हम आपका स्वागत करते हैं और नमस्ते भी। जाटव साहब, ये बताएं कि जो विषय है फल सब्जियों का प्रसंस्करण, इसमें प्रसंस्करण शब्द क्या कहता है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब मीनिंग मतलब हिंदी नहीं आम जुबान में किस तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी, सर्वप्रथम सभी श्रोताओं एवं किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे देश में उद्यान की फसलों का उत्पादन लगभग पूरे वर्ल्ड में या विश्व में कहें तो दूसरे नंबर पर उत्पादन हमारे देश में होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस है या उसका नुकसान होता है तो कई तरीके से हम देखते हैं कि फसल उत्पादन तो अच्छा होता है लेकिन हम ट्रांसपोर्ट में उसका लॉस का उठा पाते हैं कि 20 से लगभग 36% तक हमारा ट्रांसपोर्ट में सही समय पर उच्च क्वालिटी का या सामग्री ट्रांसपोर्ट ना हो पाने के कारण उसका नुकसान या लॉस हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसंस्करण एक अच्छा, जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, ये प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग जो शब्द है ये एक शब्द नहीं, ये बहुत ही बड़ा एक विस्तृत इसको शब्द कहें कि इसका मतलब ये होता है कि हम इसके जो लॉसेस हैं हमारे और उसको कम किया जा सके इसमें बदल कर प्रसंस्करण करके। और दूसरा, जब हमें हमारे यहाँ जब उत्पादन ज़्यादा होता है और किसान भाइयों को दाम कम मिलता है तो उसका हम दूसरे प्रोडक्ट में बदल कर ऑफ सीजन या जब हमारे पास उपलब्धता कम होती है उस समय हमारे पास इसकी भी वो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उस समय हमें इसको बचा के रखें या किस तरीके से उसको परिवर्तित करके रखें उसी रूप में ताकि हमें आसानी से मिल सके। तो प्रसंस्करण या फलों सब्जियों का जो कुछ है कि उनके जो नुकसान होते हैं या खराब होने का जो कारण होता है तो फलों या सब्जियों में हम देखते हैं कि जो इनके एंजाइम होते हैं जो इनको छोटे माइक्रोब्स होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अगर उनकी हम उनको निष्क्रिय कर दिया जाए जो उनकी क्रियाशील होती है उनको निष्क्रिय कर दिया जाए तो उसमें क्या है कि हमारी जो सब्जियां हैं फलें हैं वो खराब नहीं होंगे। और
0: बातचीत बताया कि उसका अगर हम अंग्रेजी में कहें तो यूटिलाइजेशन बदल दिया जाए, उसका उपयोग बदल दिया जाए सब्जी का या फल का, तो वो हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और दाम भी जब ऑफ सीजन होगा तब उसका ज्यादा मिलेंगे। अब थोड़ा सा प्रश्न ये आता है कि फल और सब्जियां, चूंकि बात शिवपुरी जिले की हो रही है, शिवपुरी जिले में जिन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है हम उसमें अगर फल और सब्जियों में लें तो फलों में कम है लेकिन सब्जियां ढेर मात्रा में है। टमाटर का एक बहुत बड़ा रकबा शिवपुरी में होता है, कद्दू का एक बड़ा रकबा होता है, इसके साथ साथ मटर का बहुत बड़ा रकबा होता है और बाकी फिर आप मेरे बताएंगे। तो इसका हम किस तरह से प्रसंस्करण कर सकते हैं और प्रसंस्करण करके क्या लाभ हमारा किसान ले सकते
1: हैं? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिवपुरी जिले में टमाटर का उत्पादन लगभग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रकबा है, लगभग 15,000 है, लेकिन प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं तो प्रोसेसिंग लगभग 1% भी या 1% भी इसका नहीं हो पा रहा है। तो इससे किसान भाइयों को एक कभी तो अच्छा दाम मिल जाता है, कभी बहुत कम दाम उनको मिलते हैं। तो हम टमाटर पे या फलों पे बात करें तो कुछ जैसे प्रोडक्ट हैं, हम फलों में देखते हैं कि एक फलों को आप जैम में बदल सकते हैं।
0: कौन कौन से फलों का शिवपुरी के लिए खासतौर पर जिक्र करना चाहेंगे? तो हम शिवपुरी के फलों की बात करें,
1: शिवपुरी में हम देखें तो अमरूद है, नींबू है, इनका हम देखें तो आप जूस बना के रख सकते हैं, अचार बना के रख सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, इन फसलों में हम फलों में कर सकते हैं। और जब सब्जियों में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विशेषकर टमाटर पे हम बात करते हैं तो टमाटर का उत्पादन पर्याप्त है शिवपुरी में। हमारे यहाँ के किसान भाई एवं युवा साथी प्रोसेसिंग प्रसंस्करण में एक अच्छा रोजगार ढूंढ सकते हैं। उसमें टमाटर के कई प्रोडक्ट हैं, जैसे टमाटर प्यूरी बना सकते हैं, टमाटर सॉस बना सकते हैं, टमाटर केचप बना सकते हैं, टमाटर से संबंधित कई उत्पाद हमारे यहाँ किसान भाई एवं युवा साथी तैयार कर सकते हैं।
0: कोल्ड स्टोर में टमाटर को रख दें तो?
1: जी हाँ, कुछ समय के लिए अगर रखना हो तो कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है लेकिन ज़्यादा समय के लिए हम नहीं रख सकते।
0: तो ये टमाटर का होगा कि आप उसका प्यूरी बनाएं या केचप बनाएं या उसका सॉस बनाएं या उसकी चटनी बनाकर कुछ फॉर्म में रखें। कौन सी दूसरी सब्जी, एक कद्दू का मैंने जिक्र किया, आप बताएंगे कद्दू का वाकई में यहाँ रकबा है कि नहीं है या कद्दू का प्रोडक्शन कम है या दूसरी किसी सब्जी का हो तो सब्जी का पहले तो नाम, कौन कौन सी सब्जियां हैं?
1: हम कद्दू होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन टमाटर के बाद हम बात करें तो यहाँ प्याज की अच्छी खेती होती है सीपुर ज़िले में। तो प्याज का भी आज हम देखते हैं कि प्याज का उत्पादन काफ़ी है, और प्याज हर सब्जी में और हर समय हर फैमिली हर परिवार को उसकी
0: बारह
1: ज़रूरत
0: माह
1: रहती,
0: डिमांड है उसकी।
1: बिल्कुल 12 महीने उसकी डिमांड या मांग रहती है। तो उसका भी हम देखें कि कई टाइम पे देखते हैं कि प्याज में उतार चढ़ाव कई ज़्यादा देखने को मिलता है वर्ष के अंतर। एक समय पे देखते हैं तो 5-10 रुपए किलो भी मिलती है, लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है कि 50-60 से लेके कई महीनी हमको खरीदनी पड़ती है।
0: तो प्याज का प्रसंस्करण कैसे करें?
1: प्याज में प्रसंस्करण है कि हमारे किसान भाई प्याज का आप उसको डिहाइड्रेट करके, डिहाइड्रेशन एक शब्द है कि उसका जो पानी है उसको,
0: नमी
1: जी, नमी को ख़त्म किया जाए, मॉइस्चर को ख़त्म किया जाए, और उसको सुखा कर उसका आप चाहें तो पाउडर तैयार कर सकते हैं प्याज लहसुन में। ये करके हम देखते हैं मार्केट में भी, आप छोटे छोटे पाउच में भी प्याज लहसुन के पेस्ट भी आता है और पाउडर भी आता है। तो ये चीज़ें जब हमारे पास पेस्ट रहेगा, पाउडर रहेगा, तो जब हमारे पास मार्केट में प्याज की मात्रा कम रहेगी और कीमत बढ़ जाएगी, उस समय हमें इसका मतलब प्रसंस्करण के द्वारा वो चीज़ तैयार की है उसका उपयोग कम दाम में एवं 12 महीने उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम मटर की बात करें तो मटर में भी हम देखते हैं कि 12 महीने हरी मटर नहीं मिल पाती है, लेकिन आज जनरली हम देखते हैं कि फ्रीजिंग के द्वारा उसको ठंडा करके एक पॉइंट पर, हम हरी मटर को ही ठंडा करके एक फ्रीज पॉइंट पर तैयार करके अगर उसको रखते हैं तो वो भी एक अच्छे भाव में और 12 महीने हमको हरी मटर के रूप में एज ए मार्केट में मिल जाती है और आप उसको यूज कर सकते हैं।
0: तो आपने तीन सब्जियों का जिक्र किया, खासतौर पर प्याज
1: टमाटर,
0: का किया, टमाटर का किया और मटर का किया।
1: जी
0: इसके अलावा शिवपुरी की कौन सी मेन क्रॉप है सब्जी के रूप में?
1: जी हाँ, अभी सब्जियों में तो हम देखें तो मेन तो टमाटर ही है
0: जी।
1: शिवपुरी का
0: और फलों
1: दूसरा।
0: में जिक्र करें, आपने जिक्र किया था 2 फलों का, एक आपने नींबू का नाम लिया था और एक जामफल का नाम लिया
1: जी
0: था,
1: जी
0: तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है?
1: जी हाँ, हम अमरूद में बात करें तो अमरूद का अच्छा प्रोडक्शन, जो हम कहें यहाँ का जो वातावरण है अमरूद और नींबू के लिए अनुकूल है, यहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है, लेकिन उतनी मात्रा में रकबा हमारे शिवपुरी ज़िले में इन फसलों में नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहें तो अमरूद से, हम चाहते हैं तो अमरूद का हम देखें तो इसका पेक्टिन निकाला जा सकता है प्रसंस्करण के द्वारा, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए
0: जी
1: बहुत अच्छा रहता है,
0: जी
1: और इसकी जेली भी बनती है अमरूद से, वो भी कर सकते हैं। और नींबू का देखें तो नींबू का तो हम देखते हैं कि मार्मलेड एक उत्पाद होता है,
0: जी
1: वो बन सकता है। दूसरा इसका जूस के रूप में उपयोग करते ही हैं, जिस समय हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट में लॉस ना हो तो हम सिकंजी या जूस में भी उसका उपयोग करते हैं, और इसका अचार बना के भी हम लंबे समय तक रख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं।
0: ये तो आपने बताया कि फल और सब्जियों का प्रसंस्करण करके हम उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उसका उपयोग बदल सकते हैं। अब बात आती है कि शिवपुरी जिले में इन सबको करने की सुविधाएं कितनी हैं?
1: ये हमारे युवा साथियों के लिए ये विशेष सवाल है और उनके लिए एक रोजगार भी पैदा करना है।
0: जी
1: तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि आज हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत
0: जी
1: हमारे युवा साथियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। जो किसान भाई या युवा साथी इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रसंस्करण से संबंधित कोई भी यूनिट आप बैंक के माध्यम से लोन लेकर इसको लगा सकते हैं। इसमें हमारे विभाग से हॉर्टिकल्चर से आपको 35% 35% तक का अनुदान उनमें दिया जाता है और 65% 65% का अनुदान आपको किस्तों के रूप में बैंक में जमा करना होता है। और इसमें हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लगभग शिवपुरी जिले से बहुत अच्छे आवेदन हो रहे हैं
0: जी,
1: बहुत अच्छे रोजगार हो रहे हैं और बहुत अच्छे युवा अपना काम इस योजना के अंतर्गत कर रहे हैं।
0: अगर हमारे कृषक भाई किसी यूनिट को देखना चाहें तो क्या शिवपुरी जिले में इस तरह की यूनिट संचालित है?
1: जी हाँ, एक यूनिट रातौर में है, एक JNG की है। हम जो किसान भाई चाहें तो हमारे विभाग में उद्यान विभाग में हमसे संपर्क करें, हम उनको दिखा सकते हैं यहाँ पर सॉस का निर्माण होता है।
0: प्याज के लिए?
1: प्याज के लिए जी हाँ, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन टीकमगढ़ में एक यूनिट है, वहाँ पर हम प्याज लहसुन एवं अदरक के पेस्ट एवं ड्रायर जो सुखाकर पाउडर तैयार किया जाता है वो हम किसान भाई जो इच्छुक होंगे उनको हम दिखाएंगे और पूरा उनको समझाने की कोशिश।
0: और फल में अगर हम बात करें तो नींबू और जामफल जिनका आपने जिक्र किया, इनकी क्या स्थिति है?
1: इनका ज़्यादा रकबा नहीं है और ज़्यादा जनरल हम देखें तो आजकल नींबू अमरूद में तो हमने जैसे बताया कि अचार है, जूस है, तो इसका तो जनरल उपयोग सभी लोग करते हैं। अचार आजकल घर घर नींबू का डाला जाता है।
0: घर घर डाला जाता है, घर में 1 किलो का डाला जाएगा, 2 किलो का डाला जाएगा, लेकिन किसान जिसके यहाँ 10 क्विंटल नींबू है वो कितना अचार डालेगा?
1: ये बिल्कुल सही है आपका, लेकिन अचार की डिमांड भी जिस तरीके से हम सलाद के रूप में टमाटर है, प्याज है,

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कृषि है, कृषि बहुत सारे नए आयाम नए समय में लेकर आ रही है। कृषि कार्य में समय समय पर तमाम तब्दीलियां यानी कि बदलाव आ रहा है और कृषि के कार्य को हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सरकार

0: उपयोग करते हैं, वैसे अचार भी हर जगह सभी को ज़रूरत रहती है, और इसका भी आप बड़े मात्रा पर तैयार कर सकते हैं और इसका भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं।
1: क्या शिवपुरी ज़िले में आप उद्यान विभाग में उद्यान विस्तार अधिकारी हैं, शिवपुरी ज़िले में क्या बाहर की कंपनियां, चाहे शासकीय हों अशासकीय हों, आकर इस सामान को क्रय करके इसका यूटिलाइजेशन बदल रही हैं?
0: जी हाँ, जैसे हम बात करें कि टोमेटो या प्याज में अपन ड्रायर करके, मतलब उनका डिहाइड्रेशन करके या उनकी नमी को ख़त्म करके सुखा कर उसका अगर पाउडर बनाते हैं, तो जैसे हम देख पाते हैं कि अभी हमारे यहाँ एक किसानी वो सॉरी एक कंपनी का जिक्र चल रहा है और वो काम भी कर रही हैं कि अगर आप टमाटर को सुखाते हैं मार्केट में, आपको टमाटर 5 से 10 रुपये किलो जब मिलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है शिवपुरी में, तो आप टमाटर को सुखाइए, हम आपको जो पाउडर तैयार होगा उससे 200 से 250 रुपये किलो तक उससे तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए ड्रायर, जो सुखाने का ड्रायर आता है, वो भी उद्यानिकी विभाग से आप प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के अंतर्गत उसका भी लाभ ले सकते हैं।
1: जी
0: उस पर भी 35% तक अनुदान विभाग से दिया जाएगा और उसे भी आप किसान भाई या युवा अपने लिए उपयोग कर सकते हैं।
1: आपने जिस रातौर की यूनिट का जिक्र किया, वो लगभग कितने लंबे चौड़े उसे जगह चाहिए अगर किसी किसान को खोलना है, वो यूनिट बनाना चाहता है तो?
0: जी, अब देखो अगर शुरुआत करना है तो आप केचप या सॉस की हम बात करें, चटनी की बात करें, तो लगभग ज़्यादा नहीं तो हम 3-4 हज़ार स्क्वायर फुट अगर एरिया है तो उसमें हम सॉस की आप यूनिट डाल सकते हैं, केचप की डाल सकते हैं, प्यूरी की डाल सकते हैं, इतने एरिया में हम आसानी से एक यूनिट लगा सकते हैं
1: और
0: टमाटर के।
1: दूसरा, यूनिट के लिए कितना लोन तक उसे लेना पड़ेगा, मतलब 65% कितनी उसकी वैल्यू बनेगी लगभग?
0: जी हाँ, अधिकतम हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो छूट है या अनुदान है वो अधिकतम उसकी राशि 10 लाख है, उससे अधिक अगर आप लेते हैं तो वो स्वयं जो युवा हैं लेने वाले कृषक हैं उनका उनकी किस्त के रूप में वहन करना पड़ेगा। हमारी 35% उद्यानिकी विभाग से अनुदान रहेगा, लेकिन 35 में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान विभाग से दिया जा सकेगा।
1: यानी कि अगर वो 20-25 लाख का लोन लेता है तो
0: पैंतीस परसेंट
1: उसका काम हो जाएगा, इतने से वो अपनी यूनिट खोल सकता है।
0: जी हाँ
1: तो जितेंद्र कुमार जाटव साहब, आप हमारे बीच में आए, हमारे सुनने वालों के बीच में आए, श्रोताओं के बीच में आए, फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण इस विषय पर बातचीत हुई। आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर हम फल और सब्जियों का प्रसंस्करण कर सकते हैं, उसका किस तरह से मोड बदल सकते हैं, उसके उपयोग का यानी कि स्वरूप बदल सकते हैं और उसका भविष्य में उपयोग करके अधिक लाभ कमा सकते हैं, और आपके उद्यान विभाग द्वारा इसमें जो सुविधाएं कृषकों को दी जाएंगी उसका भी जिक्र किया। आप हमारे साथ रहे बातचीत में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार किसान भाई।
2: भैया, अभी अपन सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय थो फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, और वार्ताकार थे श्री जितेंद्र कुमार जाटव जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे अपने भैया समर्थ अग्रवाल। तो भैया देखो, कितनी अच्छी अच्छी बातें जो हैं ये जितेंद्र साहब ने बताई कि अगर अपने स्वास को स्वास चटनी को अगर हम इसको अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सरकार से भी क्या सुविधा हमें मिल सकती है, इसके बारे में हमें एक एक बारीकी से अगर आपने इनकी बातों को सुना होगा तो आप इसे ज़रूर लाभ लोगों। और अब हम भैया आपके लाने एक और प्यारो सो लोकगीत सुनवाने जा रहे हैं, जिसको एक गाँव है राजीव कुमार रावत ने, तो चलो सुनाते हैं ये प्यारो सो लोक।

भैया अभी अपन सुन रहे थे राजीव कुमार रावत को गाओ ये प्यारो सो लोकगीत। और अब बात कर रहे थे भैया आज के मौसम की। आज शिवपुरी जिला को अधिकतम तापमान रहो 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहो 30 डिग्री सेल्सियस। मौसम में आर्द्रता यानी नमी की बात करें तो वह रही 17% और हवा की बात करें तो वह रही 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब बात करें भैया कल के कार्यक्रम में चौपाल में चर्चा के। कल भैया चौपाल में चर्चा रहेगी पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता, माफ करें बायो एक लाभ अनेक और पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता। और संगे किसानवाड़ी में चर्चा रहेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्राकृतिक खेती वर्मिंग कंपोस्ट से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। और इसके अलावा कल स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित भैया कार्यक्रम रहोगे ग्राम भदावली विकास खंड करैरा जिला शिवपुरी की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित। और इसमें असाइनी सहयोग रहेगा मोहन सिंह यादव को और भेंट करता रहेंगे समर्थ अग्रवाल। और इसी के संग कार्यक्रम चौपाल को समय अब यहीं पर समाप्त होते हैं। अपने शिल्पा को आज्ञा दो राम राम जय जवान जय।

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का नया युग पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
1: प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की चौथे चरण की यात्रा में आज नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर से भी बातचीत की और कल 3rd India-Nordic Summit में भी भाग लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता में नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा MOU हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। भारत और नॉर्वे की

0: इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने खास करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काफी बल दिया है। प्रोफेसर सचदेवा, हम यहाँ समझना चाहेंगे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होता क्या है।
2: जी, ये इनफैक्ट जैसे आप देखें, ये पूरे दौरे के अंदर, इससे पहले प्रधानमंत्री स्वीडन में भी थे, उससे पहले नीदरलैंड में थे, अभी नॉर्वे में है, आज द्विपक्षीय बात हुई है, कल उनकी जो है इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। इस सारे दौरे के दौरान बार बार ये जो बात उभर के आ रही है, ग्रीन ट्रांजिशन की, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने जैसे नॉर्वे के जो हमारी संबंध है उनको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल दिया है। इससे पहले हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी थी, और पिछले दो देशों में जहां इन्होंने दौरा किया था, स्वीडन में और नीदरलैंड में, वहां पे भी पार्टनरशिप को ऊपर करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा वहां पे दे दिया गया है। तो इस पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूरोप की तरफ, वो पहले से काफी बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है 2047 का, जब हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है भारत एक यूरोप को और यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी शक्ति को पहचानते हुए, किसकी कॉम्पिटेंसी किस चीज में ज्यादा है, उसमें उनके साथ उसी टाइप की साझेदारी हम बना रहे हैं। और उस पूरी जो आने वाले 20 साल में हमको खासतौर से जो व्यापार है, निवेश है, तकनीक है, ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें भारत, ये सारे यूरोप के जो देश हैं, मुझे लगता है वो काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली जो खपत है, 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है। तो भंडारण होने के बावजूद भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं, और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी, उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोडमैप बनाया था, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत और यूरोपीय संघ का है, वो भी ग्रीन ट्रांजिशन वाला है, ग्रीन एनर्जी की पार्टनरशिप का है। अगर क्लाइमेट चेंज की जो बात है, वो पूरी दुनिया की इकट्ठी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और जो हमारे यहाँ भारत के अंदर जो भी कुछ होगा उसका असर भी पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो किस तरीके से दोनों देश जो है वो मिलके इस पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वहां से उनके पास कई तकनीक है जो उन्होंने डेवलप की है, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, और एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है और कैसे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो वो सारी जो चीजें और जो सारी पॉलिसीज जो ये सब लोग, सब कंट्रीज और खासतौर से नॉर्डिक के देश और नॉर्वे जो है वो अपने देश में अपना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है। और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं, तो एक तो ये है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और भारत उसको, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि नॉर्वे के साथ खासतौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है दुनिया, और उसके अंदर भारत यूरोप को और खासतौर से नॉर्डिक के जो देश हैं उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है, और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो ये साझेदारी है ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की, तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफी बल दिया है, और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ और टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा, अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह से, और खास करके आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में अगर हम कहें, तो किस तरह का एक सिनेरियो आप डेवलप होता देख रहे हैं?

0: और उस समझौते के तहत ये भी एफ्टा कंट्रीज ने एक तरीके से वायदा भारत के साथ किया है कि $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल में वो भारत में करेंगे। जो नॉर्वे के अंदर खास तौर से वहां का उनका जो अपना पेंशन फंड है,
1: जी
0: बहुत बड़ा पेंशन फंड है, उसने ऑलरेडी भारत के अंदर भारत की कंपनीज में 27-28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो और भी संभावनाएं उनको लगती है कि भारत की जो मार्केट है, खास तौर से जो स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर भी वो काफी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह से जो संभावनाएं इस पूरे एफ्टा के साथ बनी है, दोनों नॉर्डिक के देशों के बीच में और एफ्टा कंट्रीज के बीच में और भारत के बीच में, और उसमें यह भी है कि भारत के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको भी शायद वहां पे पहले से अधिक मिल पाएगा मार्केट, और
1: जी
0: वहां की सर्विसेज भी भारत के अंदर आ पाएंगी। तो दोनों को लगा जो फायदेमंद है दोनों के लिए, तो इसलिए उसी के ऊपर काफी बल दे रहे हैं।
1: जी
0: तो ये दोनों जो एग्रीमेंट हमने किए हैं, उन दोनों एग्रीमेंट्स को नॉर्वे को भी और दूसरे देशों को फायदा उठाना चाहिए, यही शायद प्रधानमंत्री उनको बता रहे थे वहां पे।
1: जी जी प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री कल स्वीडन में भी थे और आज नॉर्वे आए हैं। भारत और स्वीडन के बीच में भी काफी लॉन्ग स्टैंडिंग एक बहुआयामी एक रिश्ता रहा है, काफी लंबा। लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है कि वो रिश्ता इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम समझते हैं कि ये चार बिंदुओं पर मुख्य रूप से आधारित है। प्रोफेसर सचदेवा, हम समझना चाहेंगे कि ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप था उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करने का क्या अर्थ हुआ? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है?
0: इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे मैं बता रहा था कि यूरोप के अंदर हमारा सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, इससे पहले हमारा फ्रांस और जर्मनी के साथ था, और जब यूके उसका हिस्सा था उनके साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पिछले कुछ सालों में हमने इटली और ग्रीस और पोलैंड के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था, और अभी जो है इस दौरे के दौरान हमने देखा कि दो और देशों के साथ, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक तो ये है कि जब आप किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोटे तौर से हमारे हित जो है उनके साथ स्ट्रेटेजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनर्जी की स्ट्रेटेजी हो हमारी, या हमारी दूसरे संबंध हो सुरक्षा के, उन सब में कहीं ना कहीं उन्हें हमारा कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब ये कि कई जगह पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हर साल एक समिट मीटिंग होगा, कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी, और दूसरे जो है मंत्रियों के तौर पे या अधिकारियों के तौर से अलग से कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, कुछ डायलॉग्स चलेंगे। तो एक लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्वीडन के साथ हमने पहले जो है वो एक इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया था, उसको और भी उसके अंदर बल दिया जाएगा। उसके अंदर कल जो है एक नया ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप भी वहां पे लॉन्च किया गया। तो ये है कि ये सब चीजें, नए चीजें लॉन्च की गई हैं, प्लस हमारी उनके साथ पहले से समझ बनी है, और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्थिक तौर से भी हम दोनों आपस में मजबूती बनाएंगे, और क्योंकि स्वीडन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और हमारा उनके साथ एफटीए हो रहा है, तो उसका फायदा भारत और स्वीडन दोनों को होगा।
1: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कहा।
2: भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
0: यूरोपीय देश आप जानते हैं कि पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का, उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश हैं जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से, पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत

0: किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे नॉर्डिक का अपना समूह है और बिजनेस के तौर पे हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कंक्लेव भी करते हैं, जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो तीन देश हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं, तो यूरोप को अच्छी तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी। भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संकेत। पहला गीत विष्णु देवा फिल्म से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, अनजान का गीत और राजेश रोशन का संकेत।

सनम बेवफा। लीजिए सुनिए इस फिल्म से विपिन सचदेवा को। गीत सावन कुमार का है और संगीत

अगला गीत पोलिस पब्लिक फिल्म से आवाजें, राम लक्ष्मण का गीत और अशर भोपादी का लिखा हुआ और संगीत राम लक्ष्मण का।

पति पत्नी और तवायफ। लीजिए सुनिए इस फिल्म से सलमा आगा और मोहम्मद अजीज को, आनंद बख्शी का गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा घायल फिल्म से, आवाज आशा भोसले और शब्बीर कुमार, कुमार सानू की, इंदिवर का गीत और पप्पी लहरी का संगीत।

श्रोताओं, एक सूचना। न्यायालय पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल मध्य प्रदेश से भोपाल नगरी क्षेत्र के विभिन्न समुदाय संगठन राजनीतिक दलों समिति प्रतिनिधिमंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर त्योहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किए जाने वाले धरना प्रदर्शन आंदोलन जुलूस रैली आम सभा पुतला दहन पदयात्रा रथ यात्रा कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसा गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाई जा सके, इसलिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है ताकि उसके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। पुलिस आयुक्त संजय कुमार का कहना है, नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 163 धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता है। समस्त प्रकार के आयोजन जैसे धरना प्रदर्शन आंदोलन जुलूस रैली आम सभा पुतला दहन पदयात्रा रथ यात्रा वाहन रैली ज्ञापन कार्यालय निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के लिए आयोजन के पूर्व पुलिस से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति करने पर उन आयोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जिससे शांति भंग हो। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख रखाव किया जाना प्रतिबंधित है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी।

0: सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो

0: या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंध,
2: जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट

0: करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
4: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
3: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway Space Agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Meanwhile, the Norway-India Business and Research Summit began a short while ago in Oslo. The summit has brought together representatives from government, industry, academia and research institutions of both countries. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. He said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said the discussions were highly productive.

0: में दुगना करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। पांच मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की अपनी हम मनसब मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर कल इटली के दो रोजा दौरे पर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी वजीर आजम मेलोनी के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्गियो मेटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने की गरज से कारोबारी लीडरों से भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 से 20 तारीख को इटली के दौरे पर होंगे। उनका ये दौरा पांच मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में भारत की जामे शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। वजीर आजम की इटली की वजीर आजम के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे, जिसमें समंदरी सिक्योरिटी और मुस्तहकम कनेक्टिविटी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इटली भारत को न सिर्फ यूरोप बल्कि बहिरे रूम के मुकम्मल खित्ते तक भी रसाई फराहम करता है। ये अम्र सप्लाई चेन और दिफाई शराकतदारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। उनका पांच मुल्कों का यह दौरा सफारतकारी से कहीं ज्यादा हैसियत रखता है। ये भारत के मुस्तकबिल के तवानाई रूट्स, मसनूई जहानत की शराकतदारी, सेमी कंडक्टर की रसाई, दिफाई साजो सामान की तैयारी और आलमी मफादात को बेहतर बनाने से ताल्लुक रखता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस बरस $1 खरब और अगले 5 बरस में $2 खरब की मालियत के बरामदात का निशाना तय किया है। उन्होंने वादे किया कि ये आत्मनिर्भर भारत का हकीकी हॉलमार्क होगा। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव के वेबसाइट के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस बरस आलमी चैलेंजों के बावजूद बरामदात $863 अरब तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 5% ज्यादा है। जनाब गोयल ने जोर देकर कहा कि आगे पेशरफ्त के लिए इस जोश और खरोश में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए और हर एक को बिला थकान काम जारी रखना चाहिए।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: अमरीका के आला सतह के एक सनती वफद ने नई दिल्ली में आज साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ तबादला ख्याल किया। भारत के न्यूक्लियाई सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी और सनती शराकतदारी के लिए उभरते हुए मौके पर गौर व खौज किया गया। इस वफद में अमरीकी न्यूक्लियाई सनत के सीनियर नुमाइंदे, कारोबार से वाबस्ता तरफैन और सिविल न्यूक्लियाई तवानाई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत अमरीका तआवुन के साथ वाबस्ता अहलकार शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका फिलवक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, साफ तवानाई और उभरते हुए शोबों में एक मजबूत और मुस्तकबिल की जानिब गामजन शराकतदारी के सिलसिले में एक दूसरे से वाबस्ता हैं। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत के तवील मुद्दती साफ तवानाई के अहदाफ का हवाला देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक न्यूक्लियाई बिजली की अपनी सलाहियत को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का इरादा रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम और जनूबी कोरिया के दो मुल्कों के दौरे पर आज सुपहर वियतनाम के शहर हनोई पहुंच गए हैं। वियतनाम में वजीर दिफा अपने हम मनसब जनरल फॉन वॉन ग्यांग के साथ बाहमी मुजाकरात करेंगे। जनाब सिंह का यह दौरा वियतनाम के साबिक सदर हू ची मिन के कल 136वें यौम पैदाइश के मौके पर हो रहा है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुबैना इदारा जाती बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती की तहकीकात करने की गरज से दो तहकीकाती कमीशन तश्कील दिए हैं। ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक बनाए गए हैं। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीना की मंजूरी के बाद आज इस फैसले का ऐलान किया। इदारा जाति बदउनवानी की तफ्तीश करने वाले कमीशन की सरबराही कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बिस्वजीत बसु करेंगे। दूसरे कमीशन ममता बनर्जी की क्यादत वाली सबका सरकार के दौरान خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا۔ اس کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج سمپتی چیٹرجی کریں گی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع

0: कर देंगे। उन्होंने कहा कि तहकीकात में बदउनवानी के माजी के मामलात और ख्वातीन के खिलाफ जराइम का अहाता किया जाएगा और अवाम में से लोग इन कमीशनों के सामने अपनी शहादतें पेश कर सकेंगे। बदउनवानी की इंक्वायरी में तमाम सरकारी महकमों का मुआयना किया जाएगा जिनमें पंचायतें और जिला परिषद शामिल हैं। आयुष की वजारत ने इस साल गर्मी के मौसम के लिए इंतहाई शदीद गर्मी और गर्म लहर के सिलसिले में अवामी सेहत से मुतालिक एक जामे एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जोर देकर कहा गया है कि जिस्म में पानी की कमी न होने दें, इंतहाई धूप के औकात में धूप में बराह रास्त आने से गुरेज करें, हल्के सूती कपड़े इस्तेमाल करें और मौसमी फल भरपूर मकदार में लें और ऐसे मशरूबात वगैरह लें जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता हो। इसमें शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो गर्मी से मुतालिक बीमारियों जैसे चक्कर आना, सर में दर्द होना, जी मतलाना, जहनी थकावट महसूस करना, बुखार होना, पानी की कमी, अचानक बीमार महसूस करना और बेहोशी की सूरत हाल का सामना करने से मुहतात रहें। एडवाइजरी में सिफारिश की गई है कि खराब सूरत हाल में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 108 या 102 पर कॉल करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन गर्म लू की सूरत हाल रहने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले दो दिनों के दौरान गर्म लहर की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान बस्तर जिले में नितनार गांव में अवामी खिदमात के एक मरकज का इफ्तिताह किया। इस मरकज का नाम कबायली लीडर और शहीद मुजाहिद आजादी वीर गुंडाधुर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अगले डेढ़ बरस में बस्तर में कायम तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 को इसी तरह के खिदमात से मुतालिक मरकज बना दिया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस से स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में मुनक्किदा 79वीं आलमी सेहत असेंबली से अलग मुलाकात की। जनाब नड्डा ने आलमी सेहत इक्विटी की पेशरफ के तहत भारत के अज़्म को दोहराया और कुछ अहम स्कीमों को उजागर किया जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, रिवायती अदवियात, मसनू जहानत से चलने वाले अवामी सेहत की इख्तिरात और टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की जाने वाली पायदार कोशिशें। डॉक्टर टेड्रोस ने सेहत के शोबे में भारत की असलाहत और आलमी सेहत शराकत दारी में उसकी क्यादत की तहसीन की और मुश्तरक तरजीहत के ताल्लुक से आलमी सेहत तंजीम के साथ शराकत दारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की रिफाइनरीज में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है और मगरबी एशिया के जारी बुहरान के बावजूद भारत में खातिर खा खाम तेल मौजूद है। नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कुदरती गैस का खातिर खा जखीरा मौजूद है। इसके बावजूद अफवाहों की वजह से कुछ इलाकों से एलपीजी की घबराहट में खरीदारी की खबरें मिल रही हैं। केमिकल और कीमियावी खादों की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा ने बताया कि मुल्क भर में 200 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर दस्तियाब है और खरीफ की फसल के लिए कीमियावी खादों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाके धनीवरी में एक बारात को ले जा रहे ट्रक और एक कंटेनर के दरमियान टक्कर से हुए सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं और 20 दीगर जख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी का अंदेशा है। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हम मनसब जॉनस घर स्टोर के साथ मुजाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवनाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वजीर आजम मोदी को किंग हराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमरीका के एक सनती वफ से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए दो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और एक महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से

0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: हाँ एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गानेगा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी निकाले लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया आपका वर्कर है। धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी ने तीन सवाल पूछे हैं। रुशाली जी, सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
2: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन, एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है, मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
2: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी,
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो, मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए
2: जी, जी। एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता है तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है।

0: या फायर स्टिक है,
1: जी।
0: केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें हैं।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो हैं वो इसमें आपको शो हो जाएंगे, किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि
1: जी
0: हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम की सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति
1: जी
0: को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दूसरे मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी
1: जी
0: जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इंफॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेम्बर्स अगर गाँव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेम्बर्स की गिनती गाँव में होगी, लेकिन जो जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी
2: जी नमस्कार मैडम जी,
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञों जी को प्रणाम।
0: नमस्ते, प्रणाम।
2: ना मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर

0: या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसके कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: वैशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी, तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें
1: जी
0: कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए। कोड तो नहीं है, बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है, और
1: जी
0: नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक
1: जी
0: हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर
1: जी
0: देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट
1: जी
0: उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है। और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते थे उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा अभी ज्वालियागढ़ मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो हम जनगणना हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: मैम मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते हैं और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं। 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे, तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की। स्लम और जेजे क्लस्टर, बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं, उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे। तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-0481 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का, कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी, अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2

0: साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए,
1: जी
0: और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी,
2: हाँ जी, हमारे दो मकान एक तो गांव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ विशाल, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये
0: बिल्कुल
1: सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें
1: जी
0: मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी,
2: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
3: सर जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक
0: जी
1: तरीके से,
0: जी
1: क्योंकि
0: हाँ
1: अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट

0: कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो इस तरह के जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल वैशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सबने पसंद किया है रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये नगमा, आवाज रूप कुमार राठौर की, जयदीप सैनी का गीत और सलीम सुलेमान का संगीत।

0: प्यार तो होना ही था। लीजिए सुनिए इस फिल्म से कुमार सानू, गीत विनोद महेंद्र का और जतिन ललित का संगीत।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की।
0: इस गीत को पसंद किया है सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। पुणे से प्रियंका पंकज आर्या, बाबा साहेब और चंद प्रफा बाड़ोती ने।
2: जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, पर मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: प्यार किया नहीं जाता। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में। श्याम अनुरागी के लिखे गीत की धुन बनाई है मिलिंद सागर ने। इस गीत को पसंद किया है छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। रेलवे कॉलोनी हनुमानगंज राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित एवं समस्त राजावत परिवार ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये नगमा।
1: बाबा बाबा

स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, जेएस नायक शोभा नायक, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले आरती जोंधले, छत्रपति

संभाजीनगर से राजदीप राजेश, राजकीय राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, आप सबने पसंद किया है नसीब फिल्म का ये नगमा। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

बिरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री सोनी, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमले, अर्जुन गवनेकर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक, मीका विरक, आप सबने पसंद किया है। नरसिम्हा फिल्म का ये नगमा आवाज अमित कुमार और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर के लिखे गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त कविता रावत को। नमस्कार, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग जय जय बंती। विलंबित गत एक ताल में और मध्य लय आपके साथ तबला संगत की है शुभंकर बनर्जी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम
1: नमस्कार रजनी में आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे।

आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल दोस्तों, जीवन के सफर में मिलते हैं बिछड़ जाने को, और अब हमारा भी बिछड़ने का वक्त आ गया है। अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपने दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और

0: मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड्स, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू चलने की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments, and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen, and clean energy. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between Indian and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement yesterday, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, PM Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping. PM Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity. In a gesture towards closer relations,

सुबह की 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना ससेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस शांत वातावरण में हमेशा मन यही करता है कि सबसे पहले प्रभु का सिमरन किया जाए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में

दोस्तों, सुबह के समय जब हम वॉक के लिए जाते हैं पार्क में, तो कोयल की मधुर ध्वनि कानों में जरूर सुनी होगी आपने। उसको सुनकर मन आनंदित हो उठता है। और इसी से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मीठे शब्दों का दूसरे पर कितना असर पड़ जाता है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सरगम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में थोड़ी खुशी है और थोड़ा गम है, और उसी के बीच में हमें अपनी मस्ती में जीना है। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक फिल्म से ये

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राम और

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।